0: आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: समस्त भागवत धर्मन ऊपर निकुंज माधुरी श्री युगल चंद जो विलास करत हैं, जिन यह समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे ते आप ते जाई अंतर परे निसंदेह। अब यहाँ रस के उपासक को, रसोपासक को, साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि सभी से ये चर्चा करनी उचित नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जिन यह रस समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे तो आपते जाए, यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके हृदय में जो रसानुभूति है वही समाप्त हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अंतर परे निस्संदेह, और समाप्त नहीं होगी तो कह रहे शिथिल तो अवश्य पड़ जाएगी। पूर्व भी आपसे चर्चा हुई इस विषय पर, भजन को छिपाना ही भजन को बचाना है, भजन का गोपन, और अनधिकारी के सामने तो बिल्कुल भी ना कहा जाए। अच्छा, बहुत लोग मैंने ऐसे देखा वो खींचतान कर सबको लगाने का यहाँ प्रयास करते हैं, पर ऐसा संभव होता नहीं है भाई। जीव का कल्याण केवल केवल केवल ईश्वर के अनुग्रह से होता है। आप और मैं यहाँ बैठे हैं, ये आपका मेरा प्रयास नहीं है, ये आप पर और मुझ पर प्रभु की कृपा है। ये प्रभु की कृपा के प्रसाद से आप और मैं यहाँ पर बैठे। ताते मौन होए रहनो बहुत भलो है। सब जगह प्रवचन उपदेश की आवश्यकता नहीं है, है ना। ध्रुवदास जी कह रहे आवश्यकता से भी कम बोलने वाला वस्तुतः साधक है। डोंगरे जी महाराज तो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है, आवश्यकता पड़ने पर भी आवश्यकता से कम, कहते हैं जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है वो सदा मौन रहता है। समझिए, वो सदा मौन में ही है, वो वाणी का तप कर रहा है। ये वाणी का तप है, आपको खबर भी नहीं है आप अपनी कितनी शक्ति अनर्गल बोल कर गंवाते हैं। तो फिर कहते हैं विजाति सुमिल वो भलो नाही। विजाति माने जो आपके रस के अनुकूल ना हो। अच्छा, एक और बात यहां मैं छोटी सी है पर कहना चाहूंगा, ये अच्छा है या बुरा इस वाद और विवाद में भी मत पड़िए। किसी के लिए ये घोषणा भी मत करिए कि अच्छा है या बुरा, हमारे अनुकूल नहीं है, बस इतना पर्याप्त है। अच्छे और बुरे के प्रपंच में पढ़ना भी ठीक नहीं है। जो आपके लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा होगा, होगा निश्चित रूप से होगा भाई। ऐसा ही रचा है रचने वाले ने संसार। जो आपके लिए बुरा है ना वो किसी के लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए अच्छा है वो किसी के लिए अरुचिकर होगा। तो मैं कहता हूं अच्छे और बुरे के इस वाद में भी मत पड़िए। दूरम उपाय है, जो आपके अनुकूल ना हो बस मौन होकर वहां से दूर हो जाइए। वो आपके लिए नहीं है, बस वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। और अनुपयोगी की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौन रहकर उससे दूरी बना लेना ये बुद्धिमानी है। मौन हो जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। बिन सजाती सुमिल बात ना चलावे। जब तक कोई अपने भाव के अनुकूल हृदय ना मिले तब तक चर्चा ना की जाए, इस रस की तो कदापि ना की जाए। जो सेवक जी महाराज कहते रसिकन सो प्रीतम कहे, रसिक हृदय के सन्मुख अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसी सिद्धि होए, ताते औरन सो प्रयोजन नाही। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, जैसे जिसकी भावना है। कबीर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। राम झरोखे बैठ के सबका

अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कहते तहां बखानो है तोए बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। अभी तो अपना ही कार्य नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पहले आत्म कल्याण कर ले, पहले अपना कल्याण कर ले, तत्पश्चात ईश्वर की आज्ञा हो तो धर्म का उपदेश करे, उसको माया से लिप्त होने का भय नहीं होगा, नहीं तो निश्चित रूप से स्खलन होगा। हो जाता है भाई यही।

भगवान की माया का प्राबल्य है। आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, माया का प्राबल्य क्या है कि वो अनुचित को अनुचित लगने ही नहीं देती। यही तो माया है। जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सुनाई। आपको लगेगा कि उचित है, वो अनुचित होगा, और आप उचित समझकर बस करते चले जाएंगे। यही भगवान की माया है। वो हित और अहित का, उचित और अनुचित का, सत और असत का जो भेद है, वो आपकी दृष्टि के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। और माया क्या है? यही तो है। संसार अपना लगता है, प्रभु दूसरे लगते, यही तो माया है, और क्या है? बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती? यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं, दीनों करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो कहते हैं, आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाण, अपनो रस लिए रहे, और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने नवदा भक्ति के उपदेश में बल देकर ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है, उतनी और किसी भी वृत्ति से नहीं होती। पर दोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, ऐसा तो करना ही है। यही बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है। ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते। आप में दोष दृष्टि ना हो। सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संग तज यह भक्त की रीत। व्यास जी कह रहे, बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका संग करिए। यही विवेक है। तो विवेकी कहा, अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेकी तासो कही है, जो भली गहे बुरी छाणे। अविवेकी बोले, भली बरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। अब आज तो संसार में ही रमे हैं हम, जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया, अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले अब वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार न उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो। विश्वास रखो, जिस दिन आप पात्र हो जाओगे, प्रकृति एक क्षण भी आपको वस्तु से वंचित नहीं रखेगी, क्योंकि ये द्वार तो कभी बंद हुआ ही नहीं, खुला ही है। जीव विमुख है, ठाकुर जी तो सदा सन्मुख है, जीव विमुख है। अपने आप को पात्र बनाना आरंभ करिए। और जो कुछ देर पूर्व आज चर्चा हुई, जीवन इसीलिए रचा है रचनाकार ने, ये संसार इसीलिए रचा है। सीखिए, समझिए, चोट भी लगती है तो वो आपको सुंदर बनाने के लिए, सुघड़ बनाने के लिए लगती है। बिना पिटे कोई पहलवान भी नहीं बनता है, चोट भी खानी पड़ती है, वो भी आवश्यक है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। तो कह रहे, अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। इसी को मैं कुछ देर पहले संतुलन कह रहा था। जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा, वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए, स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं? ऐसे ही जीवन है। इसमें प्रत्येक वस्तु का एक अनुपात है। अनुपात में रहेगी वस्तु तो आपको जीवन का स्वाद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा, एक और बात, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है, निरर्थक यहां पर कुछ नहीं है भाई, सबकी उपयोगिता है। इसीलिए मैंने कहा, कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है, ये सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई। एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी होती है, वही वस्तु किसी के शरीर को हानि पहुंचा देती है। अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर मन को दूषित कर बैठता है। वो आवश्यकता से अधिक चाहता है, और आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वो आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं, ताते सजाती सो मिल बात जुगल विहार
की करे बिचारे, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे, बिजाती को परस सुना करे। जो अपने भाव के अनुकूल हैं, जो अपने भाव के साधक हैं, और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रविदास जी कहने उनका संग करे, उनके संग बैठकर प्रियालाल की चर्चा करे, वार्ता करे, चिंतन करे, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे, बिजाती को परस होना करे। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता, जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद एक प्रीति ही माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो, पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, न अपरस सपरस से, वो तो एक प्रीति माने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो, पर लौन बिना सब फीक। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही प्राप्य तत्व है। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करें, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या? तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करें, सदाचार के लिए करें। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, अब उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन। एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, उनका रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं, तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की, चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले हम तो भाई पत्तल में ही पाते हैं। अब पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही, वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी कि एक दुशाला रखा है, एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, बोले जिसके लिए फटा कंबल और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है, उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वहीं मोड़कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के विधान से जो मिले। रांका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी दयनीय है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। नामदेव जी तो इतने खींच गए और पंडरीनाथ से जाकर कहने लगे आपके भक्त हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, बोले आपको जरा भी लज्जा संकोच नहीं है, आपके भक्तों के पास दो समय का भोजन नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले हम देना चाहते हैं लेते ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप देना चाहें ये लेने, चलिए हमारे साथ दीजिए। प्रभु गए, नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते हैं। राका माका कहने लगे, अब तो सच में ही कलयुग आ गया। बोले क्यों? बोले मायापति भी अपने भक्तों को माया ही देने का प्रयास कर रहे हैं, माया में ही उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले प्रभु यदि आप हमें ये देना चाहते हैं तो हमारी आपसे विनती है, आप पुनः यहाँ आने का कष्ट ना करें। अब नामदेव जी को तब विश्वास हुआ कि जाही न चाही कबहू कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। राका माका कहने लगे, प्रभु आप हमें दरिद्र समझते हैं जो देने के लिए आए, हमारे हृदय में ये जो आपका प्रेम उच्छलित है, हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं, सर्वोपरि समझते हैं। तब नामदेव जी ने देखा, वही राका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है, राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे।
भागा पीछे से आई, उन्होंने देख लिया कि क्या कर रहे हैं। मैंने कहा क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। तो मुस्कुराते हुए कहा बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहां ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसको देखकर तुम्हारे मन में कहीं कोई अन्यथा भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। तब राका ने कहा आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है, पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, कभी कभी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना अंतिम भावना जो प्रभु तक पहुंचेगी वो प्रेम ही है, वो आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पर याद किसको रखा जाता है? झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग भी दुर्घर खाई। स्मरण तो इन्हीं का किया जाता है। जब श्री जी की सेवा पाक करें तहां आचार करें। बोले जब श्री जी के लिए रसोई करें तो शुद्धता का ध्यान रखें, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें? आपके ठाकुर जी आपके हैं, आप आपके ठाकुर जी हैं, उनके बीच में न कोई आता है और न किसी को आने की कोई आवश्यकता है, और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए, जो आपसे संभव हो। बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना होने पाए। प्रसाद ही कोटि, फिर कहते हैं अपने प्रसाद पाएवे को बहुत आचार न करें। प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नाही। शास्त्र हूं मैं कही है अति आचार अनाचार समान है, रांधे अन्न विषय कछु ना माने। जो भोग श्रीजू को लागे तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको। वैष्णव सदाचार के लिए आचार करें, मन में विश्वास ना धरे कि यही ते कारज सिद्ध होएगो। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि भाई आचार भी करे कब? जब प्रभु को वस्तु निवेदन करनी हो। जब श्री ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद जब स्वयं प्रसाद पाए तो बोले बहुत अधिक आचार विचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद ही कोटि कोटि आचार का स्वरूप है। कोटि कोटि एकादशी महा प्रसाद कोन, अनेक अनेक आचार के पालन करने का जो फल है। हो धन धन श्री

0: रावण।
1: कह रहे रांधे अन्न विषय कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, सब सुख एक सीथ के स्वाद, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझ कर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है प्रभु के चरणों का अनुराग और दृढ़ होता चला जाए। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद के बल पर माया को विजय करने की बात करते हैं। उद्धव जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं एक आदर्श स्कंद में, ठाकुर जी ने कहा तुमको भी हमारी माया से डर लगता है? उद्धव जी ने कहा हम आपका प्रसाद पाते हैं, आपकी माया हमारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकती। ये प्रसाद की महिमा है, पर प्रसाद को प्रसाद जानकर पाया जाए। फिर कह रहे वैष्णव तो सदाचार के लिए आचार करें। हाँ, जब आप ये देखें कि आपका अनुसरण कोई और कर रहा है तो जहां तक संभव हो सके, और वैसे भी मुझे लगता है भाई शुद्धता स्वच्छता पवित्रता ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए, पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे और कोई कम रहेगा तो हमारा कार्य पहले सिद्ध होगा, उसका नहीं। हो सकता है उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो जूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते रघुनाथ जी प्रेम से आरोगते हैं। श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है, भोर भये ते सांझ धरे तक सेवा कोही नेम हमारो। प्रिया जी की जो टहल है जो सेवा है ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है, और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। श्री जी की सेवा प्रसाद है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर होए जाई, ही मैं आपसे कह रहा था बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है? बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे। तभी हमारी भोली सखी गाती है

हमें ऐसा होना है ना हमें वैसा होना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें। जय विधि तोहे अति प्यारी लागो, इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है और कोमल कठोर एक संग न बने। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है, सर्वविदित सिद्धांत है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे, कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का

0: पीतल हूँ।
1: और मुझे लगता है मीठा बोल ये तो ऐसा दान है जो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का ये गुण है, सबको मान देते, सभी मान प्रद आप अमानी। यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मान प्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचातानी में मर जाता है, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा। आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए, बांटिए, सम्मान दीजिए, प्रकृति आपको सम्मानित करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है, वस्तुतः सम्मानित वही है समय जिसका सम्मान करता है। और समय किसका सम्मान करता है? जो समय का सम्मान करता है। समय का सम्मान क्या है? सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। समय का सम्मान क्या है? जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है? कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है? प्रसन्नता का प्रसार करिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। जो स्नेही भजनीक हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा, एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, जय हो, जय हो। ध्रुवदास जी कह रहे हैं उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे। पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे 10 बज गई अब तक सो रहे हो? अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है। अब क्या जरूरी है कि ऐसे ही बैठकर ही भजन किया जाए? और मैं तो कहता हूं किसी की भी, साधु की क्या, मैं कहता हूं किसी की भी घटबड़ क्रिया में मन देना ही क्यों है? कौन भला करता है, बुरा करते है? मैं कहता हूं इसका विचार आपको मुझे करना ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है? न कहिए न सुनिए। और संत हो फिर तो, नानक कहते हैं संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, न कहिए न सुनिए। कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता हो उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए। मौन रहना भी सम्मिलित होना है, ऐसा मत करिए। देवदास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन पर वार डारी। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए, प्रसाद का जल दिया, नहीं पिया। वो जल गया कहां? सिंध, कबीर जी की बेटी ने पिया, बड़े भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमारी ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किसका है? मैंने वो पानी जो आप छोड़ आए थे उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो ध्रुवदास जी यहां यही कह रहे हैं, अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। ब्रह्मा जी को भूल हो गई, ब्रज के ग्वाल वालों को साधारण समझ बैठे, साधारण समझ लिया। तो कह रहे ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। जो यह बात मन में न आवे कह रहे तिन सब अनाचार किए। बोले किसी संत में दोष देखा तो उसके कोटि कोटि आचार बोले धूल में मिलते हैं, वो सब अनाचार है। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। देखो भाई यहां पर केला की कौपीन धारण करने वाले ने भी भगवत प्राप्ति की है और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा अम्बरीश ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है कि भगवान उनके लिए कहते अहम भक्त पराधीना। यहां उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे, प्रभु का स्मरण ना छूटे। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीर्थ है। श्री गोसाई कृष्णदास जी को पद साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। और श्री व्यास जी को पद साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाद। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का, कि जो जप से नहीं हुआ, तप से नहीं हुआ, योग सिद्धियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी के चरण धूल से हुआ। ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाद। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कहते हैं, बोले संतों की जो चरण धूल है ना, यही सब सुख का साधन है। और बोले मेरे जैसे कपटी का सुधार तो बस इन्हीं चरणों की धूल में लोटपोट होने से ही हो सकता है, और कोई साधन हमारे पास में नहीं है।

0: अनंत लीला अवतार, अनेक तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं, ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तिन्हों में भेद भक्त बहुत हैं। जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो, ते सब नीके हैं घट को नाही। दुर्दास जी कहने भाई, ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की ही लीला अनेक प्रकार की है, द्वारिका लीला है, मथुरा लीला है, ब्रज लीला है, उसमें भी सख्य लीला है, वात्सल्य लीला है, माधुर्य लीला है। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई, जहाँ जहाँ जाको मन लागे है, ते सब नीके हैं, सब भले हैं, घट को नाही। कभी भी अपने मन में भावना है कि हम श्रेष्ठ भजन करते हैं, जो प्रभु का भजन करता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
5: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ।

0: जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी के विचार।
1: दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? अलग अलग लोगों से अलग अलग बात सुनेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, अमीर होने के लिए, पैसा बनाने के लिए कहां इन्वेस्ट करें? कुछ लोग आपको बोलेंगे इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। नीति आयोग भी कहता है कि 2030 तक आते आते $1 trillion का ये बिजनेस होने वाला है और GDP में 13% कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो मैक्सिमम लोग, आपको पुराने लोगों से मिलिए तो बोलेंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, वो आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और वो आपको बेस्ट रिटर्न देती है। कुछ और लोगों से मिलिए, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक्स में लगाइए, बॉन्ड्स में लगाइए, इंश्योरेंस में लगाइए, म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, ये आपको बेस्ट रिटर्न देते हैं। कुछ लोग और आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक भी नहीं, बॉन्ड भी नहीं, इंश्योरेंस में नहीं, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड एंड सिल्वर। आज से 60 साल पहले गोल्ड इतने का था, आज इतने का है, उस समय लिया होता तो आज रईस होते। कुछ लोग गोल्ड और सिल्वर के लिए ऐसी ऐसी बात बोलेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट इन कम्युनिटीज विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। अलग अलग लोग इन्वेस्टमेंट की अलग अलग परिभाषाएं आपको बताते हैं कि पैसा बनाने के लिए कहां निवेश करना जरूरी है। आखिरी में कुछ बुद्धिजीवी लोग बहुत शानदार बात आपसे करेंगे, वो कहेंगे सब छोड़ दीजिए, सब बेकार की बात है, इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन एजुकेशन विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। हाँ बिल्कुल ठीक है कि बच्चों की पढ़ाई में निवेश करने से आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं। साथियों, आज मैं सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच, आपको बता देना चाहता हूं कि कहां इन्वेस्टमेंट आपको कंपाउंडिंग रिटर्न देता है। मैं जो बात आपसे करने वाला हूं वो धमाकेदार बात है। वो बात आपको बताएगी कि कैसे गरीब इंसान अमीर हो सकता है, कैसे कुछ लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं, कैसे कुछ लोगों ने जिंदगी में वो फतेह हासिल की है जो बहुत सारे लोगों के लिए महज एक सपना है। मैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं कि कहां निवेश करना चाहिए। सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज मैं आपके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पे भी बात करूंगा, कहां इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट रिटर्न देती है। मैं बताता हूं, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न। खुद के अंदर निवेश करें, अपने अंदर इन्वेस्टिंग कहां होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना स्टॉक, ना बॉन्ड्स, ना प्रॉपर्टीज, ना चिल्ड्रन एजुकेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की बेहद आवश्यकता है। इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज, योर स्किल्स विल गिव यू द कंपाउंडिंग रिटर्न्स। अगर आप ये जानते हैं पर कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते, अगर आप जानते हैं और कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते हैं। और आखिरी में, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, सबसे बड़ा वेपन चलाते हैं, जानते हैं क्या? लिखता हूं, ये सब किस्मत का खेल है भाई, सब किस्मत का खेल है। वो रईस बन गया, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। देखो सोनू शर्मा को 10वीं में मात्र 50% नंबर थे, क्या जबरदस्त नोट छाप रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल बिलीव इन कोचेस व्हाइल अनसक्सेसफुल पीपल नोज एवरीथिंग। हमें सब पता है, नहीं चलता, हमने दुनिया देखी है, यह भी नहीं चलता। आपका तजुर्बा आपको जहां तक ला सकता था ले आया, आगे का सफर आपके तजुर्बे से नहीं, नॉलेज से होगा। आज का वीडियो आखिरी तक देखें, आपकी जिंदगी बदलने के लिए यह 12-15 मिनट का वीडियो काफी है। आज मैं आपको वो 5 सफल सिद्धांत बता रहा हूं जिन्होंने कुछ लोगों को शीर्ष तक पहुंचाया। ऐसी पिटारा आपके सामने आज खोलने वाला हूं जो ना आपने सुना होगा ना आपने सोचा होगा। आज की वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देखा तो मैं दावा दे सकता हूं कि आपकी लाइफ सुपर सेट हो सकती है। 5 सक्सेस प्रिंसिपल आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क्या करने से सफलता मिलती है। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है? प्रिंसिपल नंबर 1 बहुत शानदार है। क्या? नंबर 1, स्टार्ट योर करियर एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गाइस, बहुत सफल सिद्धांत मैं आज आपको दे रहा हूं। स्टार्ट योर करियर सुपर अर्ली, जितनी जल्दी हो सके अपना करियर स्टार्ट कर डालिए। वॉरेन बफेट ने अपना करियर 11 साल की उम्र में चालू किया। पहली इन्वेस्टमेंट उन्होंने 11 साल की उम्र में की, दुनिया के टॉप 5 रईस लोगों में से हैं। इसमें भी वो एक बात कहते हैं कि मुझे और जल्दी शुरू करना चाहिए था। जानते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम क्या है? मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, धूप लग जाएगी, सर्दी में जाएगा तो जुकाम लग जाएगा, अभी उम्र बड़ी छोटी है, खेलने खालने की उम्र है। ऐसी बातें मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को मिडिल क्लास कर देती है। सफल लोग जल्दी शुरू करते हैं। वर्जिन अटलांटिस के मालिक रिचर्ड ब्रांसन ने अपना करियर 16 साल की उम्र में चालू किया। जानते हैं दुनिया के सबसे रईस इंसान एलन मस्क ने अपना पहला सॉफ्टवेयर महज 12 साल की उम्र में बेच दिया। और हमारे यहां 12-13 साल की उम्र खेलने खालने की उम्र होती है, जिस उम्र में दुनिया के दिग्गज लोग अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। मैं आपको ये प्रिंसिपल देना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंड इफ यू आर अ टीनेजर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय अभी शुरू होता है अगर आपकी उम्र 16-17 साल है, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कम से कम 5-8 साल लगेंगे। अगर आज आप 17 साल में हैं, 8 साल और जोड़ लीजिए, 25 साल में आप एक सफल इंसान होंगे। जितनी कम उम्र में शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 2 आपको बता देना चाहता हूं, फेल क्विकली बट कीप मूविंग। फेल हो जाइए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज नहीं है। फेल क्विकली, जल्दी फेल होइए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट कीप मूविंग, बढ़ते रहिए। मैं आपको एक सबसे अच्छी बात आपके लिए बता देना चाहता हूं, जो लोग अर्ली बिगनर हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आप 100% फेल होने वाले हैं। अरे आप बोलेंगे सोनू सर ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं इस दुनिया की, आप 100% फेल होने वाले हैं, सच है, क्योंकि आपने यात्रा बहुत जल्दी शुरू कर दी। अभी आपके पास ना स्किल है ना मार्केट का नॉलेज है, हो सकता है कोई मेंटोर भी ना हो जो आपको बचा सके। स्क्रैच से करोड़पति बनने का एक ही तरीका है, क्या? जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो कर लो। इस उम्र में जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो करो और कन्वर्ट करो उसको एक्शन के अंदर। जब आप मार्केट में चैलेंज फेस करो तो मान लो कि मार्केट आपका टेस्ट दे रही है। डरना मना है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ द जर्नी। फेल हो जाइए, जल्दी फेल होइए, बट कीप मूविंग। तीसरा सफल सिद्धांत आपको देता हूं, एजुकेट योर सेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी मिलेनियर एंड बिलेनियर, एजुकेट योर सेल्फ। निरंतर सीखते रहिए, बुक्स पढ़िए, इंटरव्यूज पढ़िए, केस स्टडीज पढ़िए सफल लोगों की, एनालाइज कीजिए बाकी लोगों के बिजनेस। और जानते हैं मजे की बात क्या है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन बहुत चीपर है या एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको इस वीडियो को देखने का। फोकट में देख रहे हैं कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। दुनिया में सबसे सफल बढ़िया ज्ञान फोकट में मिल जाता है दोस्त, बस अफसोस है कि हम सीखते नहीं है। 300 से ज्यादा वीडियो हैं हमारे चैनल के ऊपर, जरूर सब्सक्राइब करिए। 300 से ज्यादा फ्री वीडियो जहां पर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं, एजुकेट योर सेल्फ, सीखिए, केस स्टडी से सीखिए, सफल लोगों की जीवनी से सीखिए और सारा का सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी जिंदगी में लगाइए, जहां मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस आज आपके यूट्यूब के अंदर है, जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे अपन सफल हुए। इफ यू वांट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है? मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यह बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली, एक ही जिंदगी है। इन्वेस्ट इन बुक्स, रिकॉर्डिंग्स, हर चीज जो आपकी स्किल को बिल्ड करे। और जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे ना, उतने ज्यादा समय तक उन स्किल्स को यूज कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे उतने ज्यादा समय तक स्किल्स को यूज कर सकते हो। कार अगर आपने 18 साल की उम्र में सीख ली और आप 80 साल जीते हैं तो 62 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कार 60 साल की उम्र में सीखी और 80 साल तक जिए तो उसका फायदा सिर्फ 20 साल उठा सकते हैं। बिकम अ सेल्फ लर्नर, लर्न अबाउट टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू टॉक, हर टॉपिक पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। सीखिए और आगे बढ़िए। प्रिंसिपल नंबर 4 आपको बता देना चाहता हूं, सांसें थाम के बैठिएगा क्योंकि आपको ये डेंट करने वाला है, आपको चोट देगा, आपको पीड़ा पहुंचाएगा कि सोनू सर आज क्या बताने के मूड में आए हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, सेक्रीफाइस सोशल लाइफ। यस बॉयज एंड गर्ल्स, सेक्रीफाइस सोशल लाइफ। अपनी सोशल लाइफ को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। गुर्बत और गरीबी से निजात पाने के लिए कीमत आपको देनी ही पड़ेगी, यह कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल एक रॉकेट की तरह जिसका सबसे ज्यादा फ्यूल ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने में लग जाता है। आपकी जो शुरुआती साल हैं उसमें आपको सोशल लाइफ को बायकॉट करना पड़ेगा। जी हां, 40 घंटा अगर आप एक हफ्ते में काम करते हैं, मैं रिपीट करता हूं, अगर आप एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटा ही काम करते हैं तो यह सिर्फ आपके खाने की पूर्ति करेगा, आपके बिलों का भुगतान करेगा, दैट्स इट। अगर आप 40 आवर्स अ वीक मेहनत करते हैं तो सिर्फ बिल भुगतेंगे आपके, आप एक आम जिंदगी जिएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर आपके वर्किंग आवर्स 40 से बढ़कर 100 हो जाते हैं, अगर एक हफ्ते में आप 100 घंटा काम करते हैं, यह आपको लाइफस्टाइल देगा, ये आपको जबरदस्त लाइफ देगा और आपको एक अमीर लाइफ को फील करवाएगा अगर आप 100 घंटे काम करते हैं। लेकिन 100 घंटे काम कब करेंगे? जब सोशल लाइफ को बायकॉट करेंगे। कोई फालतू की दोस्ती नहीं, फालतू की रिश्तेदारी नहीं, कहीं फालतू का आना नहीं, फालतू का जाना नहीं, इधर उधर की गॉसिप में खोपड़ी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना अपने करियर और अपने गोल के ऊपर। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि ये कीमत ही नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं है। आप भी बाकी लोगों की तरह आम जिंदगी जी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप डिसाइड करिए कि आप कितने घंटे रोजाना अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ऐसी की तैसी कराकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। लोगों के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 7-7 8-8 घंटे के आवर्स हैं, कैन यू बिलीव इट। दुनिया भर का अनप्रोडक्टिव काम लोग बाग करते हैं, कभी इसकी शादी में जाना है, कभी उसके रिश्तेदारी में जाना है, कभी फालतू फंड का गॉसिप करना है, चार दोस्त बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। 24 घंटे खत्म होने के बाद, वो 24 घंटे दुनिया भर की संपदा देने के बाद भी आपके पास नहीं आते। आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा सोशल लाइफ और फोकस करना पड़ेगा अपने करियर के ऊपर। पांचवी सबसे खतरनाक चीज, सराउंड यूर सेल्फ विद हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। अपना वातावरण सफल लोगों के साथ बनाइए। कुछ भी ऐसा करिए कि आपके आजू बाजू में वो लोग हों जो आपको इंस्पायर कर सकें। कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए, कुछ ऐसी एसोसिएशन तलाशिए जहां पर आपके आजू बाजू के लोग बड़ी बात करने वाले हों, बड़े सपने देखने वाले हों, बड़े आइडियाज हों जिनके पास, और अर्ली बिगिनर्स हों जिनके पास गीता ज्ञान के नाम पर कुछ ना हो लेकिन एनर्जी सुपर फास्ट हो। इन सबकी एसोसिएशन में आप कमाल कर जाएंगे। बींग विद अ विनर मेक्स यू अ विनर एंड बींग विद अ लूजर विल मेक यू अ लूजर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 5 प्रिंसिपल अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर गए, मैं दावा दे सकता हूं ये साल आपकी जिंदगी का बेहद खूबसूरत साल हो सकता है।

0: रॉकी भाई जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है तो फॉलो करो KGF हेल्थ टिप्स
1: कोलार गोल्ड फील्ड।
0: नहीं, KGF मतलब कीप जिमिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी।
1: ऐसे ही सिनेमैटिक हेल्थ टिप्स जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को छटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

Angeline. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? इस शानदार से ट्रैक के साथ आ गई हूँ मैं लेकर यहाँ पर मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज अंजलि हूँ आपके साथ हर सुबह की तरह। भाई देखो, ये वाली सुबह भी होने वाली है एकदम मस्त, यानी कि यहाँ आपको अपडेट मिलने वाली है आपकी सिटी से लेकर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब आपको बताऊंगी। वेदर से लेकर आज का स्पेशल डे क्या है ये भी आपको बताने वाली हूँ। तो भाई और क्या कुछ वायरल हुआ है इस बारे में भी बात करने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीजें है आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हो जाइए रेडी, फटाफट से मसाला वाली चाय अपने हाथ में रख लीजिए, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और इस शानदार से ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इस शानदार सुरक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई अब टाइम हो गया वेदर अपडेट का। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 38 डिग्री जाने वाला है, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 29 डिग्री रहने वाला है। ह्यूमिडिटी आपको मिलने वाली है 39%, साथ ही विंड स्पीड मिलेगी 10 और इसी के साथ दिन है सनी सनी, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है लेकिन गर्मी अभी भी उतनी है। तो इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: making love songs.
1: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
2: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
3: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। जहाँ आपको ये बताने के लिए आई हूँ, अगर ग्लो चाहिए ना तो भाई अपने स्किन की प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी। अगर बात करें सनस्क्रीन की तो पहले ये जानते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है सनस्क्रीन। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग यूवी रेज स्किन को डैमेज कर सकती है और टैनिंग, सनबर्न और प्री मेच्योर एजिंग का रीजन बन सकती है। इसलिए कहा जाता है सनस्क्रीन लगाओ सो दैट कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमें कभी हो ही ना। और इसलिए सोचा क्यों ना मैं आज आपको इजी स्किन केयर टिप्स दे दूं। सबसे पहले तो सनस्क्रीन रेगुलर अप्लाई करें, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, पीक आफ्टरनून सन अवॉइड करें, साथ ही सनग्लासेस और कैप्स हमेशा यूज करें। सो भाई समर्स में फोन चार्जिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्किन प्रोटेक्शन। बस ये रिमाइंडर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बेसिकली हेल्दी स्किन का सीक्रेट सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं, डेली प्रोटेक्शन भी होती है। सो माय डियर लिसनर्स, आज से ही अपना ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। पहली बात तो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजेस जरूर खाइए, क्योंकि जब भी आप सीजनल चीजें खाते हैं ना तो आप इंटरनली भी उतने ही ज्यादा ग्लो करते हैं। सो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय बाय।
2: रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अगर प्लेनेट को क्लीन रखना चाहते हो ना तो भाई प्लास्टिक फ्री करना पड़ेगा प्लेनेट को। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। अब बात हो ही रही है प्लास्टिक की, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है प्लास्टिक में। एनवायरमेंट को पोल्यूट करता है, साथ ही ओशन और वाइल्ड लाइफ को हार्म करता है। और पता है आपको, प्लास्टिक ना सालों साल प्लेनेट पर पड़ा रहता है, यानी कि खत्म ही नहीं हो सकता। तो आज से ही स्मॉल चेंजेस एंड बिग इम्पैक्ट की तरफ हम लोग काम करेंगे, यानी कि आज से ही क्लोथ बैग इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, रीयूजेबल बॉटल्स का यूज करना शुरू कर दीजिए, सिंगल यूज प्लास्टिक अवॉइड कीजिए और साथ ही रिसाइकल हैबिट अडॉप्ट कीजिए, सो दैट कि हम अपने अर्थ को ना सब कुछ हेल्दी दे सके। और अर्थ हमारी जरूरत है और उसकी केयर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस ये चीज याद रखिएगा, एक स्मॉल इको फ्रेंडली हैबिट फ्यूचर को बेटर बना सकती है। और हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या सिर्फ पॉल्यूशन ही देंगे? नहीं ना, अगर हमें अपनी आने वाली जनरेशन को एक हेल्दी प्लेनेट देना है ना, तो भाई काम तो आज से करना पड़ेगा। सो माय डियर लिसनर्स, आज ही इस हैबिट को अडॉप्ट कीजिए और अपने साथ साथ ना अर्थ का भी ख्याल रखिए। और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: वो शॉट।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: प्रचिन, ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हाँ
2: पापा, रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ इस तरह बीच सड़क पर नाचकर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो, जैसी।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

अगर बात अपने इंडिया की हो ना, तो इंडिया में दो चीजें कभी मना नहीं हो सकती, पहली है चाय और दूसरी है गॉसिप। वेलकम बैक टू रेडियो भायानी, मैं हूँ अर्जुन श्री आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। और ऑनेस्टली चाय लवर्स के लिए तो ये एक फेस्टिवल से कम नहीं होने वाला भाई, उनके लिए सिर्फ चाय ही है जिससे उन्हें सुकून आता है। और अगर दिन की बात करूँ ना, तो ये दिन हमें बहुत कुछ सिखाता है। सुबह की नींद खोलनी हो, चाय। ऑफिस स्ट्रेस कम करना हो, चाय। बारिश एंजॉय करनी हो, चाय। हार्ट ब्रेक को डिस्कस करना हो, फिर भी चाय। यानी हर सिचुएशन का एक ही परमानेंट सोल्यूशन है, वो है चाय। तो भाई जब गेस्ट घर पर आते हैं तो क्या बोला जाता है कि एक कप चाय बना दो।

आता है। एंड सेकेंडली डिफरेंट कल्चर्स में से चाय का स्टाइल भी डिफरेंट होता है, तो आज एक एक्स्ट्रा कप चाय हो ही जाए। और अगर आज कोई चाय पीने के नुकसान बताए ना, तो उन्हें फायदे भी बता देना। और इसके साथ ही एंजॉय कीजिए आज का शो मॉर्निंग एक्सप्रेस गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ, और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जब ट्रैफिक हो टाइट और मौसम का मूड हो लाइट, वही मॉर्निंग एक्सप्रेस में मिलती है ट्रेंडिंग बाइट। सुनना ना भूले सुबह 7 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

आज हम बात करने वाले हैं एक रॉयल हेरिटेज, कलरफुल बाजार्स और टाइमलेस कल्चर की, क्योंकि जयपुर कल्चर का ग्लोबल सुपरस्टार बन गया और यही रीजन है कि जयपुर को दुनिया भर में स्पेशल माना जाता है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन श्री आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं बात करने वाली हूँ इंडिया की फेमस पिंक सिटी यानी कि जयपुर के बारे में। सो भाई, रिपोर्टेडली वर्ल्ड टॉप कल्चर सिटीज लिस्ट में प्लेस मिल गया है जयपुर को और ये रैंकिंग सिटीज के हेरिटेज, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स और कल्चर एक्सपीरियंस को सेलिब्रेट करती है। यानी कि अगर बात करें जयपुर की, तो चलिए पहले ये जानते हैं कि आखिर क्या खास बनाता है जयपुर को। रॉयल पैलेसेस और फोर्ट्स देखने को मिलेंगे आपको यहाँ, कलरफुल बाजार है जयपुर के अपने, ट्रेडिशनल फूड एंड कल्चर को प्रमोट करता है, साथ ही फेस्टिवल एंड फॉक वाइब्स हर जगह आपको जयपुर में देखने को मिलेगी, चाहे फिर बात हो हवा महल की या फिर आमेर फोर्ट की। हर जगह हिस्ट्री और ब्यूटी का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। और अगर बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर सिर्फ एक सिटी नहीं, एक रॉयल एक्सपीरियंस है, इसलिए ये अचीवमेंट इंडिया की रिच कल्चर और हेरिटेज को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है। तो हुआ ना जयपुर खास, और बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप आज तक जयपुर नहीं गए तो एक बार जरूर जाइएगा। जयपुर बहुत ही प्यारी सिटी है और गुलाबी नगरी कहा जाता है जयपुर को। यहाँ के बाजार भी अपनी रंगत में रंगे हुए हैं। सो जरूर जाइएगा एंड एंजॉय कीजिएगा रेडियो महारानी 89.6 FM को। साथ ही मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: जब ट्रैफिक हो टाइट और मौसम का मूड हो लाइट, वही मॉर्निंग एक्सप्रेस में मिलती है ट्रेंडिंग बाइट्स। सुनना ना भूले सुबह 7 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
0: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

आत्मा जी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए। मोम बीबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

बावला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.

0: वेलकम बैक टू रेडियो मनाली, मैं हूँ आरजे इंचले आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ इस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक। आप सभी को पता है इन दिनों मौसम ने कुछ इस तरह से अंगड़ाई ली है, कभी बारिश, कभी तूफान और कभी आंधी, ये सब एक साथ देखने को मिल जाता है। तो जो ये ट्रांजिशन वीक है इसका हमारी हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, यही जानने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है योगा एक्सपर्ट राधिका जी। सो आज इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले राधिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। अगर इस ट्रांजिशन सीजन की बात की जाए तो सबसे पहले ये बताइए ईटिंग हैबिट में क्या चेंज करना चाहिए, क्या अवॉइड करें और क्या इंक्लूड करें।
1: रेनी सीजन में मुझे लगता है जो अवॉइड करना चाहिए आपको, सबसे पहले आपको रॉ सैलेड्स अवॉइड करने चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि रॉ सैलेड्स पे जो भी आपके इन्फेक्शन या जो भी बैक्टीरियाज है ना वो बहुत जल्दी स्टिक करता है। और रेनी सीजन बहुत ज्यादा वैसा होता है कि सब्जी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कितने ह्यूमिड में आ रही है, किस तरीके से वो लाई गई है ना वो हमको नहीं पता होता। तो कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स ऑफ कोर्स कच्चे होते हैं, बट उसके अंदर भी आप सीजनल फ्रूट्स खाएं, जैसे बाहर से आते कि ये वहां का है, ये वहां का है, आई डोंट प्रेफर दैट। मुझे लगता है जिस रीजन में रह रहे हैं वहां के उस सीजन के जो फ्रूट्स होंगे वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होंगे। उसके बावजूद भी आपके सीजनल भी हैं, बट इट मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपरली वॉश कर रहे हैं, वो काफी देर पानी में रखे गए हैं, उसके ऊपर जो भी उसकी लेयरिंग हुई की वो हटाई गई है। दूसरा, कोशिश करो कि कच्ची चीजें तो ना ही खाओ, जो सैलेड्स जिन लोगों को हैबिट है, हेल्दी वर्जन में भी हम खाते हैं। सो मेक श्योर कि मॉनसून सीजन में आप उनको बॉइल्ड खाओ, स्टीम्ड खाओ, ताकि कोई भी चांसेस अगर वो बैक्टीरियाज के रह गए हैं ना वो भी खत्म हो जाए। दूसरा, फ्राइड और जो आपके बाहर रोड साइड फूड होता है, मतलब देखो बहुत लोगों का बिजनेस है वो, देखो बहुत ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं, बट आपकी अपने शरीर के प्रति भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो स्ट्रीट फूड इस टाइम पे मुझे लगता है कि कम खाना चाहिए, क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक आपको कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा उनको जिससे कि वो चीज मेंटेन हो रही है, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी हिट कर देता है। तो ये चीज आपको जरूर अवॉइड करनी चाहिए। और जो एड ऑन करने को मैं बोलूंगी, जैसे मैं एक सिरप की बात कर रही थी जो मैं अपने बच्चों को भी देती थी, इस सीजन में आप बच्चों को इवन अदरवाइज भी दे सकते हो, अपार्ट फ्रॉम जो आप बहुत गर्मी का सीजन है तब आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो या ट्वाइस अ वीक कर सकते हो। अदरवाइज इम्यूनिटी के लिए बड़ा हो, बूढ़ा हो या यंग हो, मुझे लगता है ये बेस्ट मेडिसिन है। आप कुछ तुलसी के पत्ते ले लो, उसको अच्छे से क्रश करके पानी में बॉयल होने दो, ठीक है? जैसे कि अगर आपको बच्चे को पानी देना तो वो आप एक कप के हिसाब से उबलना रखोगे, आधे कप होने तक वो बॉयल होएगा, ताकि उसके जो अंदर के एसेंस है ना वो उस पानी में उतने मात्रा में चले जाए कि वो आपको असर करे। तुलसी के पत्ते आपने उबाल लिए, उसके साथ में आप उसमें काली मिर्च साबुत उबाल दो, पिसी हुई नहीं, वो बच्चों को गले में लग सकती है, बड़ों को भी। साबुत काली मिर्च आपने उसके अंदर उबाल ली, उसके बाद आपने उसको छान के इसमें हल्का अदरक भी आप डाल सकते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी के लिए वेरी गुड इन फॉर योर स्टमक ऑल्सो। हल्का सा अदरक की तीन चीजें उबालनी है, तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च उबाल लिया, छानने के बाद उसमें थोड़ा सा एड ऑन कर दो शहद, बच्चों के लिए इतना इज इनफ, ठीक है? अगर आपके बच्चों या आपको लेमन का टेस्ट डेवलप है तो वो अगर बहुत गर्म है तब तो लेमन नहीं डालना, अगर आप वार्म वे में पी रहे हो हल्का सा लेमन आप डाल दो, आप देखना, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अमेजिंग रिजल्ट्स। और लोग सबसे ज्यादा गलती मुझे पता है कहाँ पे लगता है करते हैं, कि बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम पे देखो, इतनी चीजें पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, सेव भी कर लेंगे। मैं कहती हूँ 10 में से अगर आपने एक अच्छी चीज भी सुनी है ना और उसने एक को भी अप्लाई करा है, आई कैन गारंटी यू विद इन अ वीक और 10 डेज इट विल शो यू द डिफरेंस। बट मेक श्योर कि आप कर रहे हो, 100 रील्स आप सेव करते हो दिन में, उसके अंदर आपको लगता है मैं ये भी करूंगी, इतने बड़े गोल्स और इतनी सारी चीजें मत सेव। अगर दो चीज सुनी है ना एटलीस्ट उसमें से एक ट्राई कर लो अपने सच्चे दिल से, एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, मैं तो सुन के जाओ। हेलो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक स्पेशल गेस्ट योगा एक्सपर्ट राधिका जी, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं समर टू मॉनसून ट्रांजिशन वीक पर। सो राधिका जी, मैं आप ये जानना चाहती हूँ, हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करें ड्यूरिंग दिस सीजन, और क्या मॉनसून में भी उतना ही पानी पीना जरूरी है जितना कि समर्स में?
1: बिल्कुल, मॉनसून में उतना ही पानी पीना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ वही कि ह्यूमिडिटी है, चिपचिपापन है, हमें लगता है बॉडी में ऑलरेडी इतना पानी पानी हमें लग रहा होता है, स्टिकी लग रहा होता है, और उसके बाद हमें हैबिट ही नहीं। गर्मी में वही करें ना, हर किसी के पास बॉटल हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ रहेगा, बट इस वेदर में हमें लगता है कि हम इसको ना ये सोच लेते हैं हल्का ठंडा मौसम आ गया बेसिकली, तो हमारे को जरूरत नहीं लगती है उतना, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर ऑलरेडी बाहर जा रहा है, तभी आप स्टिकी फील कर रहे हो, राइट। आपकी स्किन में मिलियंस ऑफ पोर्स हैं जो आपकी बॉडी से पानी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब आप वो सोचो पूरी बॉडी में से हर पोर में से आपके स्वेटिंग के उसमें बाहर आ रहा है वाटर, राइट। आप उसको बैलेंस तो करोगे ना, क्योंकि आपका ही नेचुरली आपकी, और इसके अंदर सिर्फ आपकी बॉडी से पानी नहीं निकल रहा, तो जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं आपकी बॉडी के वो भी निकलते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है, बट मेक श्योर कि आपकी हाइड्रेशन के फॉर्म अच्छे फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि आप उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस और ये चीजों को, यू नो दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस हेल्दी ड्रिंक्स, जिसके अंदर कुछ चीजें, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैं अपने बच्चों को और खुद जो लेती हूँ, जैसे अब हर कोई नारियल पानी कहते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है, बट हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, राइट। तो आप छोटी चीजों से स्टार्ट, एप्पल ले लिया, एप्पल में नेचुरल मीठापन होता है, आप उसे मिक्सी में ग्राइंड कर दो पानी के साथ में, ठीक है, और उसको पूरा अच्छे से चर्न होने दो, आपको उसका फाइबर नहीं छानना है,
0: जी
1: ठीक है। आपने उसको नेचुरल अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड हो, ठीक है, उसके अंदर आप हल्का सा सॉल्ट और लेमन डाल के पियो, मैं कह रही हूँ इतना टेस्टी वो बड़ों के लिए और बच्चों के लिए दोनों वे में। तो ऐसे सोर्सेज वी हैव टू फाइंड आउट कि जिससे आप नेचुरल वे में बजाय किसी चीनी को ऐड करें आप अच्छी चीजों से हाइड्रेशन दो। लस्सी, छाछ, बेस्टेस्ट फॉर्म लाइट आपकी ब्लोटिंग को मैनेज करता है, आपके हर तरीके से, यू नो इट्स वेरी लाइक हेल्पफुल टू योर बॉडी। तो हेल्दी वर्जन मुझे लगता है आपके जो भी आपके लिक्विड फॉर्म के होंगे उनको ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आपकी बॉडी से मिल रहे हैं ना, तो उनको बैलेंस करना आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। साथ में आपकी हाइड्रेशन में, सिर्फ पानी को हम हाइड्रेशन नहीं बोलते, राइट, आपके जो जूसी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं जो आपके हाइड्रेशन को बैलेंस करते हैं। आप इसके अंदर प्लम, जो आपके सीजनल मॉनसून दिल्ली एनसीआर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है और सीजनल फ्रूट है, जामुन हो गया, आड़ू, जो नेचुरल फ्रूट इस टाइम के, वो सब ऐड ऑन कर दो। हाइड्रेशन में हमारे, जैसे हम वर्ड हाइड्रेशन बोलते हैं हमें लगता है हमें पानी पीना है, आप इसे हर वे में यूज कर सकते हो। आप इस मौसम में खाने के लिए, अगर मैं बोलूं हाइड्रेशन को बैलेंस करने के लिए, ड्राई सब्जियां ना खाके आप दलिया लो, पानी भी चला गया, वेजिटेबल्स चले गए, उसने आपकी बॉडी के तो मेंटेन कर दिया हाइड्रेशन को, तो आप इस तरीके से सब चीजों को ऐड ऑन करके अपनी हेल्थ को बेनिफिट कर सकते हैं।
0: थैंक यू सो मच राधिका जी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे आज, बहुत कुछ है आज आपसे जानने के लिए, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

शानदार सुट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो लेकर आई थी मॉर्निंग एक्सप्रेस। फिलहाल मेरा वक्त हो गया यहाँ से जाने का, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM को छटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मौसम के बारे में, जहाँ कल का दिन देखिए बादल आसमान नीला दिखाई पड़ा, लेकिन फिर भी उमस भरी गर्मी ने सबको परेशान कर दिया। शाम का वक्त होते होते आंधी तूफान भी हुआ, लेकिन बूंदाबांदी से यानी कि रिमझिम बारिश भी ना हुई, कुछ बूंदे टपकी और उमस और बढ़ती दिखाई दी। अभी की बात की जाए मौसम की, तो इस वक्त शहर में तापमान की अगर बात की जाए 37 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, लेकिन कहा जा रहा कल के दिन से यानी कि ट्यूसडे से लेकर वीकेंड तक अच्छी खासी बारिश हो सकती है, मौसम में बदलाव हो सकता है, गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है, मौसम ठंडा और खुशनुमा हो सकता है। देखते हैं मौसम विभाग कल में छह अभी क्या बारिश आती है, या फिर यही रिमझिम बारिश की जगह कुछ बूंदाबांदी से ही उमस बढ़ती दिखाई देगी, क्या होगा नहीं देखेंगे। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं फरीदाबाद की गलियारों से, जहाँ सेक्टर 12 की अगर बात की जाए, सेक्टर 12 टाउन पार्क में जल्दी लोगों को सिंथेटिक ट्रैक पर जॉगिंग करने का अनुभव मिलने वाला। जी हाँ, HSVP ने यहाँ सिंथेटिक बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। जहाँ अगर बात की जाए कीचड़ में भी कई बार आना जाना बहुत दिक्कत हुई, बारिशों का टाइम है, कुछ है, मिट्टी है, कीचड़ बन जाता था, लोगों के लिए जॉगिंग करना बहुत मुश्किल था, इसलिए सिंथेटिक काम स्टार्ट हो रहा है। 2-3 महीने में ट्रैक तैयार होने की उम्मीद। पार्क में बेहतरीन तरीके से सिंथेटिक ट्रैक और उसके अलावा कई सारे ऐसे काम किए जाने वाले हैं जिससे कि पार्क को और निखारा जा रहा। जहाँ इससे पहले NIT की अगर बात की जाए रोज गार्डन में सिंथेटिक ट्रैक तैयार किया जा चुका है, जो कि ट्रैकिंग के दौरान अगर बात की जाए, जब आप वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो एथलीट्स हैं, बाकी लोग हैं, आपको बॉडी पे, घुटनों पे इतने अफेक्ट नहीं पड़ते, जोर का झटका नहीं लगता, वो बाउंसी रहेगा थोड़ा बहुत, जिससे कि आपको जॉगिंग में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, जो कि एक अच्छी बात है शहरवासियों के लिए। बाकी चर्चा होते रहेंगे, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेगर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहां दोस्तों अब हम बात करते हैं फरीदाबाद के गलियारों से, जहां आप सब जानते हैं कि आए दिन साइबर फ्रॉड्स होते नजर आते हैं। कभी बात की जाए तो अनवांटेड नंबर से लिंक्स आते हैं, तो

2 मिनट में पीछे हट जाइए ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना होने पाए, और खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ, कभी आपके जान पहचान वाले के साथ ऐसा साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो तुरंत ही 1930 पर कंप्लेंट दर्ज करवाई, जैसे कि अगर आपके अकाउंट से कुछ पैसा डिडक्ट हुआ है तो वही फ्रीज किया जा सके और आपका पैसा बचाया जा सके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: बाबा बाबा,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधारा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेगर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां दोस्तों सिनेमा के गलियारे में आज बहुत ही चर्चाएं करने वाला हूं कि कौन कौन सी नई कहानियां जो सिनेमा घरों में लास्ट वीकेंड रिलीज हुई उनका क्या हाल चाल है, यानी कि कौन से पायदान पर कौन सी कहानी को अच्छा खासा प्यार मिलता नजर आ रहा है, तो कहां मेकर्स को रिस्पॉन्स कुछ फीका नजर आया। सिनेमा घर से उठी प्लेटफॉर्म तक किस्से कहानियां जो आने वाले वीकेंड में नई कहानियां लेकर के आएंगे, कुछ कहानियां कुछ ओजी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की गई नई सीरीज। हिंदी पट्टी से साउथ इंडस्ट्री तक की धमाकेदार एक्शन तो पंजाबी इंडस्ट्री के तड़कते हुए गाने। हॉलीवुड का एक्शन और सस्पेंस थ्रिल कहानियां कर रही हैं इंतजार नई जोड़ियों के साथ। ट्रेलर टीजर हुए हैं आउट, किन किन कहानियों के बताऊंगा, लेकिन ये सारी चर्चाएं करने से पहले यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता हूं कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके, और ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सभी के।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। इसी गाने में अगर चर्चा की जाए, एक बहुत ही बढ़िया वाइब के साथ गाना बनाया गया, ऐसी वाइब के साथ एक बढ़िया कहानी भी बनाई गई जिसका ट्रेलर आउट होते सारी धमाल मचाता नजर आ रहा है। प्रीतम एंड पेड्रो ट्रेलर ने धमाल मचा और बहुत जल्द यानी 3 जुलाई को ओजी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने जा रही कहानी। अरशद वारसी, वीर हैरानी, विक्रांत मैसी, बमन ईरानी, मोना सिंह जैसे स्टार्स आ रहे हैं नजर। अरशद वारसी पेड्रो के किरदार में है तो वीर प्रीतम के किरदार में विक्रांत मैसी माचिन के रूप में नजर आ रहे हैं, जबकि बमन और मोना सपोर्टिंग की रोल्स में। इंतजार है इस कहानी की रिलीजिंग का, जहां राजकुमार हिरानी का ये स्ट्रीमिंग डेब्यू भी प्रोजेक्ट स्पेशल बनाता नजर आ रहा है। अब कीजिए 3 जुलाई का इंतजार और देखते हैं कहानी क्या धमाल मचाएगी।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां बात करें श्रेक 5 के नए ट्रेलर के बारे में। इसमें श्रेक, फियोना और उनके किड्स और जॉकी जेल में देखते हैं। फिल्म 30 जून को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है यानी कि कल के दिन। ट्रेलर की बात करते हैं, स्टोरी बुक स्टाइल रिकैप से स्टार्ट होता और फिर स्टोरी को इंटरप्ट करते टोन में मॉडर्न बनाता है। एंड में ग्रुप को जेल में दिखाया गया है जो फिल्म के प्लॉट को बिगेस्ट टीजर मानते हैं। ट्रेलर ने जेंडाय को श्रेक और फियोना की ग्रोन अप चाइल्ड के रूप में इंट्रोड्यूस किया और देखते हैं यही कहानी अब 30 जून को जब रिलीज की जाने वाली है तो क्या धमाल होगा। लेकिन बात की जाए 30 जून अभी आना बहुत लंबा अरसा बाकी, एक साल तक वेट करना, 2027 की रिलीजिंग है तो फ्रेंचाइज का लॉन्ग अवेटेड रिटर्न है जहां फैंस इस लॉन्ग अवेटेड रिटर्न को भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये कहानी धमाल तो मचाएगी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं,
1: काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
5: नवराई माझी लाडाची लाडाची ग,

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक। हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं अल्फा के ट्रेलर के बारे में, जहाँ एक आंधी 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। आलिया के साथ शर्वरी, बॉबी देओल और अनिल कपूर कास्ट में दिखाई दे रहे हैं। शिव रावल कहानी को डायरेक्ट करते नजर आ रहे हैं ट्रेलर में। अल्फा कहानी में आलिया भट्ट को एक डेडली अवतार में दिखाया गया, जबकि शर्वरी उसकी आली के रूप में आती है। बॉबी देओल एक साइज पर है और इनका पूरी स्टोरी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट निभाते नजर आ रहे हैं। वायर एफ स्पाई यूनिवर्स का नया चैप्टर है और फीमेल लीड ओरिजिनल स्टोरी पे पोजीशन की गई है। ट्रेलर टीजर रिलीज ने फ्रेंचाइज का अजी एक्सपेंशन बना दिया है, इसलिए तो फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 3 जुलाई की कहानी का। एक तो पहली बात, आलिया एक बेहतरीन किरदार में आ रही है, ऊपर से फीमेल लीड ऐसी अवतार कहानी रिलीज हो रही है, इसका इंतजार सभी को बेसब्री से। बाकी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: डांस बसंती
1: हिट्स या अनरिलीज्ड जेम्स फिल्मी फ्लेवर में आरजे मोनिक आपको सुनाएंगे हर फिल्मी किस्सा ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हैं लेकर की शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों सिनेमा के गलियारे से एक और बढ़िया कहानी के बारे में, द इंडियन स्टोरी, जिसका फर्स्ट ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हो चुका है। फिल्म में काजल अग्रवाल एक डेटामाइन लॉयर के रूप में हैं और श्रेयस तलपड़े एक वॉरिड फादर के रूप में, और यह फिल्म फूड एडल्ट्रेशन के इशू पर बेस्ड है। पोस्टर में बॉम्बे हाई कोर्ट का बैकड्रॉप और विटनेस बॉक्स में पेस्टिसाइड सिलेंडर दिखाया गया जो लीगल कोर्टरूम टोन और एडल्ट्रेशन थीम को अंडरलाइन करता। टीजर और पोस्टर कवरेज के मुताबिक फिल्म पेस्टिसाइड कंटेमिनेशन और उनके हेल्थ रिस्क पर फोकस करती है। मेकर्स ने इसे सीरियस सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा के तौर पर प्रेजेंट किया है, स्लो पॉजी पॉइजन इन प्रोग्रेस। सबटाइटल के साथ कहानी लाई गई जहाँ 24 जुलाई को इसको हिंदी तमिल तेलुगु में रिलीज किया जाने वाला इंतजार रहेगा। ऐसी अवेयरनेस स्टोरी का बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है? कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो, मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
1: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेम। यहां दोस्तों हम बात करते हैं दृश्यम 3 के ओटीटी रिलीज के बारे में, जहां मुझे प्लेटफॉर्म पर इसका स्ट्रीम किया जा चुका है। मोहनलाल स्टार इस थ्रिलर को मलयालम के साथ साथ डब वर्जन में भी अवेलेबल किया गया। फिल्म का डिजिटल प्रीमियर थिएट्रिकल रन के बाद आया और कहा जा रहा है कि स्कोटी पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कंफर्म करते हुए मेकर्स ने जैसे ही रिलीज किया फैंस बड़े उत्सुक रहे इसको ओटीटी पर देखने को, बिकॉज हर कोई नहीं यार पॉसिबल हो पाता कि जाकर के थिएटर्स में कहानी को देखा जा, बट ओटीटी पर आने के बाद इसको अच्छा खासा प्यार मिलता नजर आया डब्ड वर्जन में भी और ओरिजिनल वर्जन में। आप बताइए आपको दृश्यम की तीसरी किश्त कैसी लगी, मोहनलाल का किरदार कैसा लगा, हमारे व्हाट्सअप नंबर 9654896896 पर बाकी ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले का और खूबसूरत सा ट्रैक
1: मैं फिर आ गया।

0: तू पीआर है इस खातर तेरा तक करे प्यार को न्या और सारी दुनिया में जागी टोली है तने जाट बरगा मिलेगा यार को न्या और मैडम है दिन में सिपटा रात ने स्टूडियो में गावे मने तेरा जैसा देखा स्टार को न्या तेरा जैसा देखा स्टार को न्या
1: आपका केवाईसी अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और एटीएम दोनों ही बंद हो जाएगा।
2: बट मेरा केवाईसी तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
3: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: दुश्मन।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ, आवारा।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेगर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों वक्त चला है सिनेमा के कैलेंडर का। आज बोल है एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस का जो कि कॉमेडियन भी और ना जाने कितने ही किरदार निभाती हम सबके सामने नजर आई और सबको हंसाती भी नजर आई हैं। बात करें यहाँ पे हम लोग एक ऐसे स्टार के बारे में जिन्होंने अपने किरदार से ना कि सबको हंसाया बल्कि दिल में जगह भी बना दी। आज बर्थडे उस एक्ट्रेस का जिन्होंने टेलीविजन और सिनेमा दोनों में अपनी कॉमेडी एक्सपीरियंस और जबरदस्त एनर्जी से अलग पहचान बनाई। एक ऐसी कलाकार जो स्क्रीन पर आते ही माहौल को हल्का और एंटरटेनिंग बना देती है। कभी उनके डायलॉग्स हंसा देते हैं, कभी उनके एक्सपीरियंस और कभी उनके कॉमिक चार्मिंग। कौन है वो बताऊंगा लेकिन सबसे पहले सुनाऊंगा कुछ धमाकेदार से गाने।

0: शादी ना पापा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाय बाय।
1: सुनो तो, सुनो तो,

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं सिनेमा के कलंजे की, जहाँ आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है बहुत ही बढ़िया स्टार उपासना सिंह। पंजाब से अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू करने वाली उपासना सिंह ने हिंदी और पंजाबी सिनेमा दोनों में नाम किया। शुरुआती दौर में उन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाया और धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। जुदाई, हंगामा, गोलमाल, रिटर्न जैसी फिल्मों में उनके कैरेक्टर्स ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया। सबसे बड़ी ताकत उनकी है नेचुरल कॉमेडी और एक्सप्रेसिव एक्टिंग। टेलीविजन में उपासना सिंह को घर घर की पहचान दी। कॉमेडी दर्ज विद कपिल में बुआ का कैरेक्टर उनकी करियर का टर्निंग पॉइंट था। 22 साल की वाला उनका अंदाज और कॉमेडी चार्म ऑडियंस को बहुत पसंद आ। उपासना सिंह ने सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि सीरियस और इमोशनल रोल्स भी किए, लेकिन उनके कॉमिक इमेज ने उन्हें एक अलग ही पॉपुलैरिटी दी। आज भी बुआ का कैरेक्टर इंडियन टेलीविजन के आइकॉनिक कॉमेडी कैरेक्टर्स में शामिल किया जाता है। ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा गाना ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात कर रहे हैं आज उपासना सिंह के बारे में, जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। कॉमेडी करना मुश्किल होता है और सालों तक लोगों को हंसाते रहना उसे भी मुश्किल। उपासना सिंह ने अपनी मेहनत और टैलेंट से ये काम बाखूबी किया। हिंदी और पंजाबी फिल्म्स और टेलीविजन टर्न मीडियम्स में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। आज भी कॉमेडी शोज की बात होती है तो उनका नाम जरूर लिया जाता। आप बताइए, आपको उपासना सिंह का बुआ वाला अवतार ज्यादा पसंद है या फिल्मों के करेक्टर्स? हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर। बाकी ऐसे भी चर्चा होती रहेंगी, लेकिन आज नहीं, आपसे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह। अगर वो ढेर पाते तब तो सुनते रहे रेडियो महारानी।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हर ब्लॉकबस्टर के पीछे एक चेहरा होता है जो पोस्टर पर नहीं होता, जिसकी फोटो थिएटर के बाहर नहीं लगती, लेकिन अगर वो इंसान ना हो तो शायद फिल्म भी ना हो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो होता है फिल्म डायरेक्टर यानी कि आदित्य धर। और आदित्य धर की कहानी भी उसी तरह के एक इंसान की कहानी है। आज जब भी आदित्य धर का नाम लिया जाता है, लोग तुरंत उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को याद करते हैं। नेशनल अवार्ड, ब्लॉकबस्टर कलेक्शंस, आइकॉनिक डायलॉग्स और वो फेमस लाइन हाउस द जोश, ये तो सबको याद है। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी स्पॉटलाइट से नहीं हुई थी। आदित्य धर का जन्म दिल्ली में हुआ। बचपन से ही उनका इंटरेस्ट फिल्म में था, लेकिन उन्हें सिर्फ फिल्में देखना पसंद नहीं था। वो उन लोगों में से थे जो फिल्म देखते वक्त ये सोचते थे, ये सीन ऐसे क्यों लिखा गया, ये कैरेक्टर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, अगर मैं होता तो इस कहानी को कैसे बताता। यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे पैशन में बदलने लगी। और फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मुंबई जाना है, सपनों की नगरी। लेकिन मुंबई हर किसी को रेड कार्पेट वेलकम नहीं देती। यहाँ हजारों लोग रोज आते हैं, हर किसी के पास एक ड्रीम होता है, और इंडस्ट्री का पहला लेसन बहुत सिंपल होता है, टैलेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन पेशेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदित्य धर ने भी वैसा ही फेस देखा। उन्होंने एक्टिंग के पीछे भागने के बजाय राइटिंग पर फोकस किया, कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया, कई आइडियाज लिखे, कई बार रिजेक्शंस भी मिला। और ये वही स्टेज होती है जहां बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रगल ग्लैमरस नहीं होता, स्ट्रगल में कैमरा नहीं होता, क्लैप्स नहीं होती, अवार्ड्स नहीं होते, सिर्फ अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन आदित्य धर लगे रहे इंडस्ट्री में। धीरे धीरे उनकी पहचान एक राइटर के रूप में बनने लगी। उन्होंने सॉन्ग्स लिखे, स्क्रिप्ट्स लिखी, क्रिएटिव डिस्कशंस का हिस्सा बने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो सीखते रहे हर प्रोजेक्ट से, हर फेलियर से, हर रिजेक्शन से। कई लोग स्ट्रगल को टाइम वेस्ट समझते हैं, लेकिन बाद में जब आप सक्सेसफुल लोगों की कहानी देखते हो तो समझ आता है कि वही स्ट्रगल उनकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग थी। आदित्य धर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके पास एक विजन डेवलप हो रहा था, एक ऐसा विजन जो सिर्फ एक राइटर का नहीं था, एक फ्यूचर डायरेक्टर का था। लेकिन उस वक्त शायद उन्हें भी नहीं पता था कि कुछ सालों बाद वो इंडिया की सबसे इंपैक्टफुल मिलिट्री फिल्म में से एक डायरेक्ट करने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनका नाम तब भी हेडलाइंस में नहीं था। वो शांति से काम कर रहे थे, बिना नॉइस के, बिना पब्लिसिटी के, बिना किसी गारंटी के, क्योंकि उन्हें पता था कभी कभी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिलती है जो स्पॉटलाइट के बाहर रहकर भी अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करते रहते हैं। लोग अक्सर सक्सेस को देखते हैं लेकिन सक्सेस के पहले वाले सालों को नहीं। आदित्य धर की कहानी याद दिलाती है कि कभी कभी दुनिया को आपका नाम जानने से पहले आपको खुद पर भरोसा रखना पड़ता है। और ये थी कहानी आदित्य धर की। करेंगे इसके बारे में और भी बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

हर फिल्म मेकर के करियर में एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसे डिसाइड करना पड़ता है, सेफ खेलना है या वो कहानी बतानी है जिस पर उसे खुद यकीन है। आदित्य धर के लिए भी वो मोमेंट था उरी का। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर की। कई साल तक इंडस्ट्री में राइटर के रूप में काम करने के बाद आदित्य धर के पास एक्सपीरियंस तो था, लेकिन एक डायरेक्टर के रूप में उनकी पहचान अभी बनी नहीं थी। और बॉलीवुड में पहली फिल्म डायरेक्ट करना आसान नहीं होता। प्रोड्यूसर रिस्क देखते हैं, स्टूडियोज नंबर्स देखते हैं, और ऑडियंस का टेस्ट हर साल बदलता रहता है। इसी दौरान सितंबर 2016 में एक खबर पूरे देश में छा गई। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी कैंप पर टेररिस्ट अटैक हुआ, कई जवान शहीद हुए। पूरा देश गुस्से में था। कुछ दिनों बाद इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की और फिर हर जगह एक ही बात हो रही थी, आखिर उस ऑपरेशन में हुआ क्या था, कैसे प्लानिंग हुई होगी, कैसे सोल्जर्स ने मिशन एग्जीक्यूट किया होगा। जब ज्यादातर लोग न्यूज देख रहे थे, तब आदित्य धर कहानी के बारे में और सोचने लगे। उन्हें लगा कि इस ऑपरेशन के पीछे सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटजी नहीं है, इंसानी इमोशंस भी है, डर है, प्रेशर है, सेक्रीफाइस है, और सबसे इम्पोर्टेंट उन लोगों की कहानी है जो देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। यहीं से उरी का बीज बोया गया। लेकिन एक आइडिया होना और फिल्म बनाना दोनों अलग चीजें होती हैं। मिलिट्री सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना ऑलरेडी रिस्की माना जाता था, और जब डायरेक्टर भी नया हो तो रिस्क और बड़ा लगने लगता है। बहुत लोगों ने सोचा कि क्या ऑडियंस इतनी सीरियस फिल्म देखना चाहेंगे, क्या ये बॉक्स ऑफिस पर चलेगी, क्या ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टर इतने बड़े सब्जेक्ट को हैंडल कर पाएगा। ये सवाल सिर्फ इंडस्ट्री के नहीं थे, ये सवाल खुद आदित्य धर के सामने भी खड़े थे। लेकिन उन्होंने एक चीज समझ ली थी, अगर कहानी में सच्चाई हो तो ऑडियंस उससे कनेक्ट करती है। फिर उन्होंने रिसर्च शुरू की, रिपोर्ट्स पढ़ी, मिलिट्री ऑपरेशंस को समझा, आर्म्ड फोर्सेस के काम करने का तरीका समझा, और धीरे धीरे स्क्रिप्ट शेप लेने लगी। लेकिन आदित्य धर एक टिपिकल वॉर फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। वो सिर्फ एक्सप्लोजन और गन फाइट्स नहीं दिखाना चाहते थे, वो सोल्जर्स के इमोशन दिखाना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि यूनिफॉर्म के पीछे भी इंसान होते हैं, जिनके परिवार होते हैं, जिनके डर होते हैं, और जिनके सपने होते हैं। और जैसे जैसे स्क्रिप्ट आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ प्रेशर भी बढ़ रहा था, क्योंकि अब ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रही थी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुकी थी। वो प्रोजेक्ट जो उन्हें राइटर से डायरेक्टर बना सकता था, या फिर उनके करियर को बहुत बड़ा झटका भी दे सकता था। और शायद इसी वजह से आदित्य धर ने इस फिल्म पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, टाइम, एनर्जी, क्रिएटिविटी, इमोशन, सब कुछ। उन्हें पता था कि अगर फिल्म ऑडियंस तक वैसे पहुंच गई जैसे वो इमेजिन कर रहे हैं, तो उनकी जिंदगी बदल सकती है, और अगर नहीं हुई तो शायद लोग उन्हें फिर से एक राइटर के रूप में याद रखेंगे। लेकिन हर बड़े सपने के साथ एक बड़ा रिस्क आता है, और आदित्य धर ने वो रिस्क लेने का फैसला कर लिया था। दुनिया को उरी एक मिलिट्री फिल्म देखी, लेकिन आदित्य धर के लिए वो एक टेस्ट था, एक ऐसा टेस्ट जिसमें उन्होंने प्रूव करना था कि कभी कभी सबसे बड़े डायरेक्टर्स वही बनते हैं जो सबसे बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। तो ये थी आदित्य धर की उरी फिल्म की कहानी, और आगे कैसे मिले उन्हें नेशनल अवार्ड और कैसी रही उनकी पर्सनल लाइफ, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान, आई एम द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

कुछ लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं और कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं कि सक्सेस खुद उनके दरवाजे तक आ जाती है। उरी के बाद आदित्य धर की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर की। साल था 2019, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक रिलीज हो चुकी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। ऑडियंस थिएटर से बाहर निकलते वक्त सिर्फ फिल्म की बात नहीं कर रहे थे, वो उस इमोशन की बात कर रही थी जो फिल्म ने सबके अंदर जगाया था। सोशल मीडिया पर डायलॉग्स वायरल हो रहे थे, हाउ्स द जोश, हाय सर, ये सबको याद है। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं रहा था, ये एक नेशनल कैच फ्रेज बन चुका था। और इस डायलॉग के पीछे जो राइटर डायरेक्टर था उसका नाम अब पूरा देश जाने लगा था। कई साल तक जो इंसान कैमरे के पीछे क्वाइटली काम कर रहा था वही इंसान इंडस्ट्री के सबसे डिस्कस्ड फिल्म मेकर्स में से एक बन गया था। लेकिन असली मोमेंट अभी आना बाकी था। अगस्त 2019 नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस हुए और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने कई बड़े अवार्ड जीते। सबसे खास था बेस्ट डायरेक्टर नेशनल अवार्ड फॉर आदित्य धर। सोचिए, एक फिल्म मेकर जिसने पहली फीचर फिल्म डायरेक्ट की और उसी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीत लिया। ये सिर्फ अचीवमेंट नहीं थी, ये वैलिडेशन था। उन सारे सालों की वैलिडेशन जब उन्होंने स्ट्रगल किया था, जब उनके आइडियाज रिजेक्ट हुए थे, जब किसी को नहीं पता था कि आदित्य धर कौन है, उस दिन उनकी जर्नी ने एक पावरफुल मैसेज दिया। कभी कभी एक मौका ही काफी होता है, बस उस मौके के लिए सालों तक तैयार रहना पड़ता है। लेकिन इसी दौरान उनकी पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत बड़ा चैप्टर लिखा जा रहा था। उरी की शूटिंग के वक्त ही आदित्य धर और एक्ट्रेस यामी गौतम के बीच दोस्ती बढ़ने शुरू हुई थी, जो काफी सिमिलर माना जाता था। लो प्रोफाइल, प्राइवेट और अपने काम पर फोकस्ड। इंडस्ट्री में जहां रिलेशनशिप अक्सर हेडलाइंस का हिस्सा बन जाती है, वहां इन दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखा। ना पब्लिक ड्रामा, ना कॉन्स्टेंट मीडिया अपीयरेंसेस, ना अननेसेसरी पब्लिसिटी। और शायद इसी वजह से जब जून 2021 में उन्होंने शादी की अनाउंसमेंट की तो बहुत लोग जेन्युइनली सरप्राइज्ड हो गए। सोशल मीडिया पर एक सिंपल सी वेडिंग फोटो आई, नो एक्स्ट्रावेगेंट सेलिब्रिटी इवेंट, नो ओवर द टॉप सेलिब्रेशन, बस एक सिंपल ट्रेडिशनल और एलिगेंट वेडिंग। और लोगों को ये सिंप्लिसिटी बहुत पसंद आई। आदित्य धर का नेशनल अवार्ड जीतना सिर्फ एक एंडिंग नहीं था, वो एक नई बिगनिंग थी, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब लोग उनसे सिर्फ एक अच्छी फिल्म नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिल्म एक्सपेक्ट करने लगे थे। और इंडस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट काम होता है अपनी पहली बड़ी सक्सेस के बाद खुद को प्रूव करते रहना। नेशनल अवार्ड ने आदित्य धर को पहचान जरूर दी, लेकिन उनकी असली जीत ये थी कि सालों के स्ट्रगल के बाद भी उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी नहीं खोई। और शायद वही क्वालिटी किसी फिल्म मेकर को सक्सेसफुल से मेमोरेबल बनाती है। तो ये थी आदित्य धर की पर्सनल लाइफ और अवार्ड जीतने की कहानी। और आगे क्या हुआ इसके लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: पड़ोसन हूँ, इसलिए जासूस हूँ।
1: बोलो सिमी बहन जी, तुम्हें पता है गुड्डू की लड़की चुन्नू के लड़के के साथ भाग गई, और ये खबर सबको सबसे पहले मैंने ही बताई थी। और पता है एक दिन स्वीटी के घर चार लड़के आए, हाय वो तो बाद में पता चला कि वो पेंटर थे। और पता है टिल्लो का पति रोज पीकर आता है, और जब ये बात मैं सबको बताने जाती हूँ तो लोग मेरे को जासूस बताते हैं। ले अब ये भी कोई बात हुई भला।
2: सही कह रहे हो पैंड जी, जो जानकारी रखते हैं ना उनको सब जासूस ही कहते हैं।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है।

0: ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से, वो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
1: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

कुछ डायरेक्टर्स हिट फिल्म्स बनाते हैं और कुछ डायरेक्टर्स ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस ही बदल देते हैं। सवाल ये है, आदित्य धर किसके डिग्री में आते हैं? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर की। उरी की सक्सेस के बाद आदित्य धर के पास एक चॉइस थी। वो चाहते तो वही फॉर्मूला बार बार रिपीट कर सकते थे, एक और पैट्रियोटिक फिल्म, एक और मिलिट्री ड्रामा और एक और सेफ प्रोजेक्ट। इंडस्ट्री में ऐसा बहुत बार होता है, एक फिल्म हिट हो जाए तो उसी टाइप की 10 और फिल्म बनने लगती है। लेकिन आदित्य धर का चैलेंज कुछ और था। अब उन्हें सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन नहीं करना था, उन्हें प्रूव करना था कि उरी कोई एक्सीडेंट नहीं थी, वो उनका विजन, राइटिंग और डायरेक्शन का रिजल्ट था। और यही हर सक्सेसफुल फिल्म मेकर का असली टेस्ट होता है। पहली हिट फिल्म बनाना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में काम करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। उरी के बाद इंडस्ट्री का नजरिया उनके प्रति बदल चुका था। जो फिल्म मेकर कभी प्रोड्यूसर्स को कन्विंस कर रहा था, अब वही फिल्म मेकर इंडिया के बिगेस्ट प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा था। और लोगों को एक बात समझ आने लगी थी, आदित्य धर सिर्फ एक्शन डायरेक्ट नहीं करते, वो इमोशंस और स्पेक्टेकल के बीच बैलेंस क्रिएट करते हैं। उरी में लोगों ने सिर्फ वॉर नहीं देखी थी, उन्होंने डिटर्मिनेशन देखी, लीडरशिप देखी, सैक्रिफाइस देखा था, और इसी वजह से फिल्म ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुई थी। यही क्वालिटी किसी भी फिल्म मेकर की पहचान बन जाती है। और जब इंडियन सिनेमा ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच रहा है, तो फिल्म मेकर्स के सामने एक नया चैलेंज है। सिर्फ इंडिया के लिए फिल्म बनानी है या ऐसी कहानी बनानी है जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान को एंगेज कर सके। और आदित्य धर उन डायरेक्टर में से माने जाते हैं जो स्केल और स्टोरी टेलिंग दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसी सोच का एक एग्जाम्पल है उनका फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटमेंट। जब भी उनका कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, ऑडियंस सिर्फ कास्ट नहीं देखती, वो ये देखना चाहती है कि इस बार आदित्य धर क्या नया लेकर आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक रेपुटेशन बना ली है डिटेल ओरिएंटेड फिल्म मेकर की। और ऐसे फिल्म मेकर की जो प्रिपरेशन को सीरियसली लेता है, जो रिसर्च करता है, जो अपने सब्जेक्ट्स को रिस्पेक्ट के साथ प्रेजेंट करता है। लेकिन लेगेसी सिर्फ फिल्म से नहीं बनती, लेगेसी इम्पैक्ट से बनती है। और उरी के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, बहुत सारे यंग राइटर्स और एस्पायरिंग डायरेक्टर्स को मोटिवेशन मिली। उन्होंने देखा कि एक राइटर भी डायरेक्टर बन सकता है, एक आउटसाइडर भी नेशनल अवार्ड जीत सकता है, और एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन सकती है। ये इम्पैक्ट नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन सिनेमा पर इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि हर जनरेशन को एक कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स चाहिए होते हैं जो नए नए लोगों को इंस्पायर कर सके। और शायद इसीलिए आदित्य धर की लेगेसी भी कंप्लीट नहीं हुई। सच कहें तो उनकी लेगेसी अभी लिखी जा रही है, उनका करियर अभी उस स्टेज पर है जहां लोग उनके नेक्स्ट चैप्टर का इंतजार कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो सक्सेसफुल डायरेक्टर बनकर रहेंगे या उन डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल होंगे जिनके नाम से ही ऑडियंस थिएटर तक पहुंच जाती है। स्टीवन स्पीलबर्ग, क्रिस्टोफर नोलन, राजकुमार हिरानी, ऐसे डायरेक्टर्स जिनकी पहचान उनकी स्टोरी टेलिंग बन जाती है। आदित्य धर के पास अब वो अपॉर्चुनिटी है, और शायद इसी वजह से उनका अगला हर प्रोजेक्ट सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक स्टेटमेंट होगा। आदित्य धर की कहानी हमें एक सिंपल बात याद दिलाती है, हर सपना स्पॉटलाइट में नहीं शुरू होता। कभी कभी एक राइटर के डेस्क पर लिखे गए छोटे से आइडिया से भी हिस्ट्री बन सकती है। एक वक्त था जब इंडस्ट्री उनका नाम नहीं जानती थी, और फिर एक वक्त आया जब पूरा देश उनकी फिल्म का डायलॉग तक रिपीट कर रहा था। ये सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, ये पेशेंस, बिलीफ और विजन की कहानी है। और अगर उनकी जर्नी ने अब तक कुछ प्रूव किया है, तो वो ये है कि असली लेगेसी एक फिल्म से नहीं बनती, वो हर उस कहानी से बनती है जो लोगों के दिल और यादों में जिंदा रह जाती है। तो ये थी कहानी आदित्य धर की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। हमारा नंबर है 9654896896। फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आपसे फिर से दोबारा सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए गधा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
2: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

इसी गाने के साथ स्वागत है, शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड, जहाँ हम बिजनेस को बैलेंस शीट से नहीं जिंदगी से समझते हैं। और आज का एपिसोड किसी ऐसे ब्रांड की कहानी है जो सिर्फ बाइक नहीं बनाता, जो सिर्फ मेटल इंजन और टायर का कॉम्बिनेशन नहीं है। ये ब्रांड आइडेंटिटी है, ये ब्रांड एटीट्यूड है, ये ब्रांड उन लोगों के लिए है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पर हर स्ट्रॉन्ग ब्रांड के पीछे एक वक्त आता है जब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। हाँ, ऑलमोस्ट। सोचिए ऐसी कंपनी जिसकी हिस्ट्री 100 साल से ज्यादा पुरानी हो, जिसका नाम सुन के लोग रिस्पेक्ट से सर हिलाते हो, और फिर एक दिन बोर्ड रूम में ये बात हो रही हो, इसे बंद कर देते हैं। लॉस बढ़ता जा रहा था, नंबर्स रेड में थे, एग्जीक्यूटिव्स टायर्ड हो चुके थे, और ब्रांड बस सरवाइव कर रहा था, जी नहीं रहा था। ये वही फेज होता है जहां ज्यादातर कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां वहीं से शुरू होती हैं। उस रूम में सब लोग बहुत एक्सपीरियंस थे, डिकेड्स ऑफ विजडम, और तब एक यंग वॉइस बोली, गिव मी टाइम, बस थोड़ा सा टाइम, मैं इसे वापस खड़ा कर सकता हूँ। सोचिए जब सब लोग बोल रहे हो क्लोज इट और आप कह रहे हो बिलीव इन इट। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये जुनून होता है। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का एक इमोशनल कनेक्शन है अपने आइडिया के साथ। इस कहानी में भी ये कनेक्शन बोर्डरूम से नहीं, गैराज से शुरू हुआ था। एक टीनेजर, एक मशीन और एक फीलिंग जो दिल में बैठ गई। उस वक्त किसी को आइडिया नहीं था कि ये फीलिंग एक दिन पूरी इंडस्ट्री का फ्यूचर चेंज कर देगी। बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं होता, बिजनेस होता है डिसीजन लेना जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। बिजनेस होता है ब्रांड को जिंदा रखना जब मार्केट उसे आउटडेटेड बोल चुकी हो। और सबसे बड़ा बिजनेस होता है अपने बिलीफ पर टिके रहना जब दुनिया आपको गलत कह रही हो। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विजन की जो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, एक ऐसे ब्रांड की जो हिस्ट्री बन चुका था पर फ्यूचर भूल चुका था, और एक ऐसे इंसान की जो बहुत यंग था पर सोच बहुत पुरानी और गहरी थी। कौन था ये लड़का जिसने लॉस में डूबती कंपनी से टाइम मांगा, जिसने सबके मना करने के बाद भी गिव अप नहीं किया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अपना वादा निभा पाया? इसका जवाब नाम के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन अभी गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: Once again, welcome back. You are listening Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हटके शो है Business Unplugged. और अभी अभी आपने मुझे सुनना अगर शुरू किया है तो मैं आपको बता देती हूँ मैं एक ऐसे ब्रांड की बात करने वाली हूँ आज जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था. और मैंने एक सवाल पर आपको छोड़ा था, कौन था वो लड़का, कौन था जिसने एक ऑलमोस्ट डेड लेगेसी के लिए टाइम मांगा. बिजनेस अनप्लग्ड में मैं कहानी को सीधा नाम से शुरू नहीं करती क्योंकि कुछ नाम पहले महसूस किए जाते हैं, बोले नहीं जाती. सोचिए जब आप किसी सड़क पे खड़े होते हो और दूर से एक आवाज आती है. अब ये आवाज बहुत जानी पहचानी सी लगती है, आप बिना देखे समझ जाते हो कि ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है. ये आवाज, ये वाइब्रेशन, ये प्रेजेंस, ये बताता है कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं, एक लेगेसी है. और जब एक लेगेसी डूबने लगती है तो उसे बचाने के लिए सिर्फ बिजनेस सेंस काफी नहीं होता, उसके लिए इश्क चाहिए होता है. हाँ हाँ, मुझे पता है इश्कबाजियां नहीं है, लेकिन एक तरफ बोर्डरूम था, नंबर्स, लॉसेस, बिजनेस शीट्स, और दूसरी तरफ एक यंग माइंड जिसके लिए सिर्फ एक डिविजन नहीं था. एग्जीक्यूटिव्स कह रहे थे इस ब्रांड का टाइम खत्म हो चुका है. और तब एक आवाज उठी, सॉफ्ट थी पर डिसीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग, गिव मी 24 मंथ्स, बस दो साल. जब कंपनी महीने के लाखों का लॉस कर रही हो, सोचिए कितना बड़ा रिस्क होता है ये. बिजनेस अनप्लग में हम नाम तब रिवील करते हैं जब आप उस इंसान को थोड़ा सा समझ चुके हो. इस कहानी का हीरो कोई आउटसाइडर नहीं था, कोई रैंडम एंटरप्रेन्योर नहीं, वो सिस्टम को अंदर से जानता था, वो लेगेसी के बीच ही बड़ा हुआ था. पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसे आसानी से सब कुछ मिल जाने का ऑप्शन नहीं मिला था, पर फिर भी उसने मुश्किल रास्ता चुना. इस कहानी के हीरो का नाम है सिद्धार्थ लाल. सिर्फ 26-27 साल की उम्र में एक ऐसी जिम्मेदारी जहां लोग एक्सपीरियंस देखते हैं, वहां इन्होंने विजन दिखाया. और जिस ब्रांड को लोग आउटडेटेड बोल चुके थे, ओल्ड स्कूल बोल चुके थे, उस ब्रांड का नाम है रॉयल इनफील्ड. नाम रिवील हो गया है पर कहानी यहीं से शुरू हो जाती है. सोचिए एक तरफ पूरी इंडस्ट्री कह रही हो ये नहीं चलेगा और दूसरी तरफ एक यंग लीडर कह रहा है ये चलेगा, बस इसे सही तरीके से समझना पड़ेगा. सिद्धार्थ लाल ने ब्रांड को बदलने की जगह लोगों की सोच बदलने का फैसला किया. ये डिसीजन ही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बना. बिजनेस में सबसे मुश्किल होता है फोकस. जब आपके पास 100 चीजें करने का ऑप्शन हो और सिर्फ आप एक चूज करते हो, उन्होंने भी वही किया. नए सेगमेंट्स, नो. डिस्काउंट कल्चर, स्टॉप. सिर्फ एक चीज, ब्रांड को वापस उसकी जान देनी है. पर सवाल अब ये था, सिद्धार्थ लाल जैसे यंग लीडर ने सबसे पहले क्या डिसीजन लिया, वो कौन सी एक चीज थी जो उन्होंने सबसे पहले बदली, और उस डिसीजन का उनके बचपन से क्या कनेक्शन था. इसका जवाब हम इनके बचपन में जाकर ही देने वाले हैं, इनकी एजुकेशन और उस गैराज से शुरू हुई कहानी जिसमें छुपा है इस कहानी का पूरा सच. तो अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड.
1: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो आप सबके फोन से लोकेशन कॉन्टैक्ट फोटो सबने हमेशा सब मांगे उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज और अकाउंट इज इन डेंजर या पार्सल इज अराइविंग। अरे मेरे भाई, मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड, और अभी मैंने एक नाम आपको बताया है। नाम है इस ब्रांड का रॉयल एनफील्ड, पर कहानी अभी आधी भी नहीं हुई है, क्योंकि किसी एक इंसान को समझने से पहले जरूरी होता है उस जमीन को समझना जहां वो खड़ा था। और सिद्धार्थ लाल जिस जमीन पर खड़े थे ना, वो भी हिल रही थी। आज हम आयशर मोटर्स को सक्सेस ट्रक्स और रॉयल एनफील्ड के साथ जोड़ते हैं, पर एक वक्त था जब आयशर के पास खुद डायरेक्शन नहीं थी। मल्टीपल बिजनेसेस, स्प्रेड आउट फोकस और क्लैरिटी की कमी। 90s के एंड तक आते आते कंपनी के पास सब कुछ था, रिसोर्सेज, एक्सपीरियंस, लेगेसी, बस एक चीज मिसिंग थी, क्लियर विजन। रॉयल एनफील्ड भी उसी कंफ्यूजन का हिस्सा बन चुकी थी। एक ऐसा ब्रांड जो या तो बेचा जा सकता था या क्वाइटली बंद, और ऑनेस्टली बिजनेस लॉजिक के हिसाब से ये गलत डिसीजन नहीं लगता था। बोर्डरूम्स में इमोशन नहीं चलते, वहाँ सिर्फ नंबर्स बोलते हैं, और नंबर्स कह रहे थे रॉयल एनफील्ड इज अ लायबिलिटी, ओल्ड मशीनरी, आउटडेटेड इमेज। ये ब्रांड फ्यूचर नहीं बल्कि नॉस्टैल्जिया लग रहा था। और तब यहीं से कहानी एक ट्विस्ट लेती है। आयशर कोई रैंडम कॉर्पोरेट नहीं था, ये एक फैमिली रन लेगेसी थी। इसके फाउंडर और लीडरशिप ने इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को क्लोज से देखा था, और इसी लेगेसी के बीच एक लड़का बड़ा हो रहा था। बोर्डरूम्स में डिस्कशंस, फैक्ट्रीज के राउंड्स और घर पर बिजनेस की बातें, ये सब उनकी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा था। पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसे बिजनेस इनहेरिट करने का प्रेशर नहीं था, उसके पास चॉइस थी। 17 साल का एक लड़का बोर्डिंग स्कूल से घर आता है, और घर के गैराज में उसकी नजर पड़ती है एक लाल रंग की चमकती हुई बाइक पर। वो बाइक सिर्फ आयरन और रबर नहीं थी, वो कुछ कह रही थी। उस आवाज ने उस लड़के के दिमाग में एक परमानेंट जगह बना ली। उस वक्त उसे ये नहीं पता था कि फ्यूचर में यही आवाज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन बनेगी। सिद्धार्थ लाल सिर्फ पैशन के भरोसे नहीं चले, उन्होंने दुनिया देखी, एजुकेशन ली, ग्लोबल एक्सपोजर समझा। इन्होंने देखा कि कैसे इंटरनेशनल ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, कम्युनिटी बनाते हैं। और शायद यहीं से इनके दिमाग में एक थॉट बैठा, रॉयल एनफील्ड को बाइक नहीं, एक्सपीरियंस बनाना है। कुछ बच्चे टॉयज के साथ बड़े होते हैं, कुछ स्टोरीज के साथ, और कुछ मशीन्स के बीच। सिद्धार्थ लाल के लिए इंजन की आवाज कभी नॉइज नहीं थी, वो लैंग्वेज थी। जब आयशर क्राइसिस में आई तो उस लैंग्वेज ने उन्हें चुप रहने नहीं दिया। पर जब इन्होंने रॉयल एनफील्ड को बचाने का डिसीजन लिया, तो क्या सब उनके साथ खड़े हुए थे, या फिर सबसे बड़ी लड़ाई उन्हें अपने ही सिस्टम से लड़नी पड़ी? और उन्होंने टीम कैसे बनाई जब भरोसा ही मिसिंग था? इसका जवाब मैं आपको देने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, लेकिन गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

कॉल। सबसे पहले सिद्धार्थ ने जयपुर प्लांट बंद किया। डिसीजन लॉजिकल था पर इमोशनल भी। लोगों ने कहा ये गलत है, ये ब्रांड को और कमजोर करेगा। फिर डीलर्स डिस्काउंट बंद। कंपनी पर हर महीने 80 लाख का बर्डन कम हुआ, पर बैकलैश बढ़ गया। टीम तब बनती है जब सब अच्छा चल रहा हो। टीम तब बनती है जब लोग आपके साथ लॉस में भी खड़े हो जाएं। सिद्धार्थ लाल ने सिर्फ सीवीज नहीं देखे, इन्होंने देखा कौन रॉयल इनफील्ड को सिर्फ जॉब नहीं आइडेंटिटी समझता है। इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, मार्केटर्स सबको एक ही बात समझाई, हम बाइक नहीं इमोशन बना रहे हैं। और यहीं सिद्धार्थ लाल बाकी सीईओ से अलग हो जाते हैं। वो बोर्डरूम में बैठ के रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते, वो बाइक उठाते हैं, हजारों किलोमीटर्स राइड करते हैं, रियल राइडर्स से मिलते हैं, उनकी कंप्लेंट सुनते हैं, उनके सपने समझते हैं और फिर वापस आकर प्रोडक्ट बदलते हैं। उनके डिसीजंस पे सवाल उठते गए। टू ओल्ड ब्रांड, यूथ वांट बाय दिस। पर सिद्धार्थ लाल को पता था यूथ को स्पीड नहीं कैरेक्टर चाहिए, और रॉयल इनफील्ड के पास कैरेक्टर था, बस उसे जगाना था। जब फर्स्ट पॉजिटिव सिग्नल आए तब मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया, तब टीम को लगा शायद हम सही डायरेक्शन में हैं। मोरल्स उठा, एनर्जी बढ़ी और रॉयल इनफील्ड सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रही थी, वो स्लोली रिवाइव हो रही थी। पर स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुई थी। असली इम्तिहान तो तब आया जब नंबर्स बोलने लगे। प्रॉफिट, ग्रोथ और एक ब्रांड जो फिर से किंग बनने वाला था, पर कितना बड़ा और कैसे। अभी गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी और मैं आपको बताऊंगी रॉयल इनफील्ड का बूम।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 89.6 FM कुछ हटके और आज हम बात कर रहे हैं रॉयल इनफील्ड की। अभी थोड़ी ही देर पहले हमने बात की थी डिसीजंस की, स्ट्रगल की और एक ब्रांड को जिंदा रखने की। पर बिजनेस की दुनिया में एक मोमेंट आता है जब इमोशंस चुप हो जाते हैं और नंबर्स बोलना शुरू करते हैं। तो अगर साफ बात करूं, साल 2000 के आसपास रॉयल इनफील्ड लगभग 20 करोड़ की लॉस में थी। ब्रांड को बंद करने का ऑप्शन टेबल पर था और सिर्फ 2 साल के अंदर पिक्चर बदलने लगी। कंपनी नेट प्रॉफिट में आ गई। यहीं से रॉयल इनफील्ड का ग्राफ ऊपर चला जाता है। 2001 में आती है 350cc बुलेट इलेक्ट्रा फर्स्ट मॉडर्न पुश्ड। 2002 में थंडरबर्ड लॉन्च हो जाती है। डिमांड्स बढ़ने लगी, वेटिंग पीरियड शुरू हो गए और ये वेटिंग फेलियर के नहीं डिजायर के साइन थे। जहां पहले प्रोडक्शन लिमिटेड थी, वहीं रॉयल इनफील्ड साल दर साल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंड करती गई। आज रॉयल इनफील्ड लाखों बाइक्स एनुअली मैन्युफैक्चर करती है। प्लांट्स मॉडर्न हुए, प्रोसेसेस अपग्रेड हुई और क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई। अब आते हैं रियल बिजनेस नंबर पर। रॉयल इनफील्ड आइशर मोटर्स का सबसे बड़ा प्रॉफिट इंजन बन चुकी है। कंपनी का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ रुपीज में है। सिर्फ इंडिया नहीं, एक्सपोर्ट भी स्ट्रांग है। यूरोप, अमेरिका, एशिया, रॉयल इनफील्ड का ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। मिड साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट यानी 250cc से 750cc, इस सेगमेंट में रॉयल इनफील्ड अनडिस्प्यूटेड लीडर है। कॉम्पिटिटर्स आए, मॉडल्स लॉन्च हुए, पर रॉयल इनफील्ड की कम्युनिटी लॉयल्टी और कल्ट स्टेटस अलग ही लेवल पर था। आज आइशर मोटर्स सिर्फ एक ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है, ये एक फोकस्ड प्रॉफिटेबल ग्रुप है। पास्ट में 15 बिजनेस थे, आज सिर्फ वो बचे जो ट्रूली स्केल कर रहे थे, रॉयल इनफील्ड और कमर्शियल व्हीकल्स। और यहीं से आइशर की स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बनी। ये नंबर सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, ये प्रूव करते हैं कि अगर आप ब्रांड को समझ जाओ, कस्टमर्स को सुन लो और फोकस लूज ना करो, टर्न अराउंड पॉसिबल होता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी डार्क क्यों ना हो। इतनी सक्सेस के बाद, इतने नंबर्स के बाद, एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ी जीत होती है प्रॉफिट, स्केल या लेगेसी। इसका जवाब मैं आपको दूंगी, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है, इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

वेलकम अगेन, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हट के हमने बात कर ली है नंबर्स की, टर्नओवर की, स्केल की, सक्सेस की, पर अब हम बात करेंगे उस चीज की जो बैलेंस शीट में नहीं मिलती। अक्सर हम सक्सेस को सिर्फ पैसों से नापते हैं, कितना प्रॉफिट, कितना टर्नओवर, कितनी बाइक्स। पर जब आप रॉयल एनफील्ड की कहानी को पीछे मुड़कर देखते हो ना, तो एक बात समझ आती है, सक्सेस का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता, सक्सेस का मतलब होता है टिक जाना। रॉयल एनफील्ड सिर्फ बाइक नहीं है, वो पहली सैलरी का अपना बनी, वो लॉन्ग राइड का एक्सक्यूज बनी, वो दोस्तों के साथ खामोशी में बांटने वाली फीलिंग बनी। और ये सब पॉसिबल हुआ जब किसी ने ये सोचा कि मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करूंगा, मैं अपनी पहचान बनाऊंगा। और अगर आप मुझे सुन रहे हो और बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हो, तो इस कहानी से तीन सिंपल बातें याद रखना। पहली, जब सब मना करें तो शायद वही सही डायरेक्शन होता है। दूसरी, कभी कभी सोल्यूशन जो चीज चल रही है उनको बेहतर तरीके से समझने में होता है। तीसरी, नंबर्स इम्पोर्टेंट है पर बिलीव उनसे पहले आता है। लीडरशिप का मतलब सबसे आगे चलना नहीं होता, कभी कभी लीडरशिप का मतलब होता है रुक रुक कर सुनना, समझना और फिर वही वक्त पर स्टैंड लेना। सिद्धार्थ लाल ने ये सब बिना शोर के किया और शायद इसीलिए उनका इम्पैक्ट इतना गहरा है। सोच कर देखिए, अगर उस दिन रॉयल एनफील्ड बंद हो जाती तो सिर्फ एक कंपनी नहीं मरती, एक कल्चर, एक कम्युनिटी और हजारों सपने कभी रोड पर नहीं आते। बिजनेस अनप्लग के आज के सफर में एक ही मैसेज है, कभी भी अपने सपने को सिर्फ इसलिए मत छोड़ना क्योंकि दुनिया उसे लॉस कह रही हो। हो सकता है वही सपना कल किसी और की इंस्पिरेशन बन जाए। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड, जहाँ हम सिर्फ सक्सेस की नहीं उसके पीछे की सच्ची कहानियों की बात करते हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके, कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग।

क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है गर्मियों में कि फ्रिज का पानी पिया हो पर फिर भी दिल को सुकून ना मिला हो, और फिर किसी ने एक मिट्टी के मटके से स्टील के ग्लास में पानी दिया हो, ना तो आइस ना कूलिंग बटन, फिर भी पहला घूट ही सीधा रूह तक उतर गया हो। वो कहा है कि जो सुकून मिट्टी की ठंडक में होता है वो शीशे की ठंडी बॉटल्स में कहां। और इसी के साथ रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि, और शो लेकर आ गई हूं कल्चर कारवा, जहां आज बात होगी एक ऐसी चीज की जो सिंपल भी है, साइंटिफिक भी और इमोशनल भी, यानी मटका। बात करें मटके की तो आइए पहले ये जानते हैं आखिर कितना पुराना है ये मटका। कोई मॉडर्न इनोवेशन नहीं, इंडिया में हजारों सालों से मिट्टी के बर्तन यूज होते हुए आए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकेवेशन में भी मिट्टी के पॉट्स और वाटर वेसल्स मिले हैं। अब सोचिए जरा, जब ना फ्रिज था ना इलेक्ट्रिसिटी, तब ये सारी चीजें आखिर आई कहां से? तब इंसान ने मिट्टी में ही कूलिंग सिस्टम ढूंढ लिया। वो कहते हैं ना, नेचर के सबसे बड़े इनोवेशंस अक्सर नेचर से ही आता है। और इसी के साथ वापस आकर जानेंगे आखिर मटका पानी ठंडा कैसे करता है। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज बात कर रहे हैं उस जादुई मटके की जहां पानी अपने आप ठंडा हो जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं आखिरकार मटका पानी ठंडा कैसे करता है। अब जरा इसके पीछे का साइंस जानिए। मटका मिट्टी का बना होता है और मिट्टी में होते हैं छोटे छोटे पोरस। उन छोटे छोटे होल से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आता है और बस धीरे धीरे हवा के कांटेक्ट में इवोपरेट होता है और बस इस इवोपरेशन प्रोसेस की वजह से अंदर का पानी नेचुरल कूल हो जाता है। मतलब मटका इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, नेचर के साइंस से चलता है। वो कहा है कि जो चीजें कुदरत के करीब होती हैं वो अक्सर सेहत के भी करीब होती हैं और इसीलिए गर्मियों का असली हीरो कहा जाता है मटके को। एक टाइम हुआ करता था जब हर घर के कोने में मटका हो

सकता था। उसके नीचे छोटा सा स्टैंड, ऊपर एक स्टील का ग्लास और बार बार मम्मी की आवाज, फ्रिज का नहीं मटके का पानी पियो, क्योंकि मटके का पानी सिर्फ ठंडा नहीं होता, सॉफ्ट और अर्थी भी होता है। जैसे उसमें मिट्टी की खुशबू घुल गई है। और मिट्टी के पीछे का ना एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, वो है कुमार और मिट्टी का रिश्ता। इस कनेक्शन के बारे में भी जानेंगे, लेकिन वापस आकर तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजी और आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी के मटके के बारे में। जहां सबसे खास रिश्ता है कुमार और मिट्टी का रिश्ता। मटका सिर्फ एक वेसल नहीं, एक आर्ट है और इस आर्ट के पीछे होते हैं आर्टिस्ट जिन्हें कहते हैं कुम्हार। वो लोग जो मिट्टी को शेप देकर रोजमर्रा की जिंदगी में सुकून भर देते हैं। एक सिंपल सा मटका बनाने के लिए भी मिट्टी चुनना, उसे गूंदना, चाक पर शेप देना और धूप में सुखाना पड़ता है। कहते हैं कुछ लोग मिट्टी से सिर्फ बर्तन नहीं कल्चर बनाते हैं और इसलिए मटका और इंडिया कल्चर बहुत पुराना है। इंडिया में मटका सिर्फ पानी रखने के लिए नहीं था, सर्दियों में फेस्टिवल्स में और रिलीजियस रिचुअल्स में भी मटके का स्पेशल इम्पोर्टेंस रहा है। कई जगह तो मटका प्रॉस्पेरिटी और लाइफ का सिंबल माना जाता है क्योंकि पानी और मिट्टी दोनों ही जीवन के बेस हैं। वो कहा है कि जिस मिट्टी से हम बने हैं शायद सुकून भी उसी में छुपा होता है। अब वापस आकर जानेंगे फ्रिज वर्सेस मटके की जंग। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से वो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं मटके के बारे में। तो चलिए फिर जानते हैं फ्रिज वर्सेस मटका। अगर बात करें फ्रिज की तो फ्रिज आज हर घर में है, पर फिर भी समर आते ही लोग मटका खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज पानी को आइस कूल करता है पर मटका उसे जीता हुआ रखता है। मटके का पानी न ज्यादा ठंडा न शॉक देने वाला, बस परफेक्ट। और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर बॉडी के लिए आइडियल नहीं होता, और यही रीजन है मटका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, समर मेमोरीज है। दोपहर की गर्मी, कूलर की आवाज, आंगन और मटके के पास रखा ग्लास। कभी कभी लगता है पुरानी गर्मियां ज्यादा खूबसूरत थी, शायद इसलिए क्योंकि तब चीजें नेचुरल थी और वक्त भी थोड़ा धीरे चलता था। वो कहा है कि पुरानी गर्मियों में एसी कम थे पर सुकून ज्यादा था। मटका हमें एक सिंपल सी बात सिखाता है कि सिंपलिसिटी कभी आउटडेटेड नहीं होती, और कुछ चीजें टेक्नोलॉजी से नहीं ट्रेडिशन से बेटर चलती हैं। वो कहा है कि ना बैटरी चाहिए ना बटन का सहारा। मिट्टी का मटका आज भी गर्मी को हरा देता है, जो जुड़ा हो जमीन से वही असली सुकून देता है। अगली बार गर्मी लगे तो एक ग्लास मटके का पानी जरूर पीना। हो सकता है ठंडक सिर्फ गले तक नहीं, यादों तक पहुंच जाए। और इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। कल फिर से मिलेंगे एक और सिंपल सी चीज में छुपी एक बड़ी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

सच सच बताना, संडे कैसा गया? नहीं, मेरा तो अच्छा नहीं गया ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा इसलिए नहीं गया क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी और फिर उसके बाद घर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। आप लोगों में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिनका मन घर से निकलने का नहीं कर रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। कल दोपहर में बारिश भी हुई थी, बताया आप लोगों को, और शाम को तो आंधी चली थी, उसने मौसम थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर दिया था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हो आप सब? आप सबकी मंडे ब्लूज को दूर कर देंगे आज। और देखो शाम हो गई है, 5:05 हो गए हैं और ऐसे ही 8 बजे तक बहुत सारी मस्ती होने वाली है, गाने भी चलेंगे। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि मैं आ गया हूँ और जब मैं आता हूँ तो 3 घंटे के लिए आता हूँ आप सभी से बात करने के लिए। एंड देखो, जब आप और मेरी बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बातें मैं ही करता हूँ, बट कभी कभार होता है लोगों की कॉल्स आते हैं, काफ़ी बार ऐसा भी होता है मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाता। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई समस्याएं हैं फरीदाबाद को लेके तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 9654896896। एनीथिंग, मतलब कोई भी परेशानी हो सकती है। हाँ, लव रिलेटेड मत आना मेरे पास, वैसे वो भी कर लेंगे, काउंसलिंग कर सकता हूँ मैं। कहते हैं ना, दूसरों के दर्द में इंसान एक काउंसलर बन जाता है, जब खुद दुख होता है उसको तब वो काउंसलिंग सारी गायब हो जाती है। चलिए इसी के साथ साथ फरीदाबाद के बारे में बात करेंगे। एंड इसी के साथ में ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग अखबार पढ़ते हैं तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि अखबार में बहुत सारे के मतलब केसेस आ रहे हैं उसमें। और इसके अलावा SIR चल रहा है तो उसके लिए भी सब लोग कंफ्यूज है कि करना क्या है इसमें। तो करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात, और फिर उसके बाद बात करते हैं गर्मी के बारे में क्योंकि गर्मी तो बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोई कह रहा है कि कल मानसून आएगा, कोई कह रहा है परसों मानसून आ जाएगा। तो मानसून कब आएगा ये तो वक्त बताएगा, मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, IMD भी ज़रूर बता सकता है। तो ये सब लोग मिलके वक्त बताएंगे और मैं भी आप सभी के साथ खूब सारी बातें करता चाहूँगा। फिलहाल गाने भी चलाऊंगा तो रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाने में देरी ना करते हुए KK की आवाज़ में आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर सुनिए इस गाने को। मैं बस यूं गया और यूं आया, I swear, यूं गया यूं आया। तुझे

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

ना तो सुबह हसीन है और ना ही शाम हसीन है, और ये बात मैं ये वाला गाना तब चलाऊंगा जब मौसम अच्छा हो जाएगा और हसी हो जाएगा। हसी था इस गाने का नाम। रेडियो महारानी 89.6 पर तलविंदर की आवाज़ में चलाया था मैंने ये गाना। और देखो बाहर मौसम मुझे पता है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, इट इज़ लाइक 41 degrees, बट हो सकता है आपके आसपास छींटे पड़ रहे हो इस टाइम, क्योंकि देखो मैं अभी अंदर बैठा हूँ, मेरे को यहाँ से मौसम तो दिख नहीं रहा, बट हाँ गूगल मैप मेरा यही बता रहा है, मैप नहीं माफ़ कीजिए गूगल वेदर मेरे यही बता रहा है कि हाँ बाहर अभी टेम्परेचर 41-40 के आसपास हो रहा है। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, पता है आपको, एक होता है टेम्परेचर, मान लेते 40 डिग्री के आसपास है, एक होता है फील्स लाइक कि कैसा फील हो रहा है, तो अभी फील्स लाइक 48 डिग्री हो रखा है ये। और सैटरडे को, और उसी के साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा फ्राइडे को तो फिर भी ठीक था, सैटरडे को इट वॉज फीलिंग लाइक एज ए 51 डिग्री सेल्सियस। तो 51 डिग्री की गर्मी कैसी होती है वो हमने फील कर ली थी कब, सैटरडे को। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब वो फील्स लाइक हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ना टेम्परेचर उतना ही होगा, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यह है कि टेम्परेचर जो हमारा थर्मोमीटर होता है ना उसमें जो दिखाता है वही चीज़ पब्लिक में बताई जाती है। तो अब कूलिंग इज एक्सपेक्टेड ओवर द नेक्स्ट 2 डेज, यानी कि बारिश हो सकती है कल और परसों, और फिर मौसम का आगाज, मौसम नहीं माफ कीजिए मानसून का आगाज हो जाएगा परसों से, कह रहे हैं 1 जुलाई से मानसून अगर आ जाएगा तो फिर अच्छा ही तो है, मज़ा ही तो आ जाएगा। और मैं आप सभी को बता दूं, देखो गर्मी बढ़ रही है और मौसम अब चेंज होने वाला है, तो जैसे ही मानसून आएगा वैसे ही लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी, ऑलरेडी हो चुकी है शुरू, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और रेडियो महारानी सुनते जाइए। मैं तो बस यही प्रे करूंगा सब खैरियत से रहे और रेडियो महारानी सुनते जाएं, और आप सभी के लिए गाने भी चलाऊंगा, तो उन्हीं में से एक गाना मिक्स मैशअप खैरियत और पल पल दिल के पास, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

अनस्टॉपेबल इस टाइम दो चीजें हैं, एक है गर्मी और दूसरा हूं मैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। शाम हो रखी है, मौसम में थोड़े से बादल है, मतलब आसमान में थोड़े से बादल है, मगर गर्मी जो है ना वो गर्मी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो गर्मी बाहर भी है। और अभी ब्रिटेन एंड यूरोप में पता है आपको 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा है, एंड दे वर लाइक बावले हो रखे हैं यार लोग वहां पर। लोग बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और वहां पर एसी खरीदने के लिए होड़ मची हुई, लूट मची हुई है, सीरियसली वहां एसी की शॉर्टेज हो गई है। तो इतनी गर्मी उनको 40 डिग्री में क्यों फील हो रही है? देखो मेन क्या होता है वहां पर ना, आसमान में नमी है। अब नमी मीन्स ह्यूमिडिटी, उमस बोल सकते हैं हम लोग, उमस वाली गर्मी हो रही है वहाँ पर। और मेरे ख्याल से उन लोगों को पहली बार शायद ऐसी गर्मी देखने को मिल रही होगी, नहीं तो इंडिया में तो ये चीज़ कॉमन है, हम लोग तो हर साल ही देखते आ रहे हैं गर्मी को। खैर बता दूँ आपको, जब उमस वाली गर्मी होती है ना तो उसकी वजह से क्या होता है, पसीना आता है बहुत ज़्यादा आता है, और वो जल्दी सूखता नहीं है, और फिर शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता, बस इसी वजह से गर्मी ज़्यादा फील होती है। और वो जो एक बार लू वाली गर्मी होती है ना, वो तो एक बार को झेली जाती है, बट ये उमस वाली गर्मी नहीं नहीं नहीं नहीं ये नहीं झेली जाती। तो अभी आपको बता दूं वहाँ पर एसी की भी कमी हो गई है, और अचानक से उधर हीट वेव भी आई,

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
3: The Master.

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

सबके मन में एक ही सवाल है और वो सवाल ये है कि क्या फिर से जल भराव होगा फरीदाबाद में जब मॉनसून आ जाएगा। तो मैं कहूंगा नहीं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 99.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड बंडा आप सभी के साथ। ये गाना था परदेसिया फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी। गाना नो डाउट बहुत ज्यादा अच्छा था, बट अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो शायद और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है, आप लोगों को पसंद आएगी। देखो फरीदाबाद में बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा अभी पिछले ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने से खुदाई चल रही थी, बहुत सारे सीवर लाइंस डाली जा रही है, नीचे बड़ी बड़ी पाइपलाइंस डाली गई ताकि जब बारिश हो ना तो उस टाइम जल भराव ना हो। नो डाउट सरकार अपना काम कर रही है, लोग परेशान हुए, नो डाउट डेवलपमेंट जब होती है ना तो इट इज़ अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस, तो उसमें लोग परेशान होते हैं। बट अभी आप लोग मॉनसून के टाइम पे परेशान ना हो, इसलिए जगह जगह पर जल निकासी के लिए काम किया गया। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ कुछ हॉटस्पॉट्स की, जैसे कि हम सभी को पता है, हम सभी को मालूम है, ओल्ड अंडरपास हो या फिर कोई और अंडरपास हो फरीदाबाद का, बारिश के टाइम पे वो ज़रूर भरता है। तो इस बार कोशिश की जा रही है कि इस बार वो नहीं भरेगा, या फिर भरेगा तो जल्दी से जल्दी उधर से पानी की निकासी हो जाएगी। और इसके अलावा सबसे फेमस जो जगह है जहां पर पानी भरता है वो है गुड़ियर चौक, और वहां पर इतनी ज़्यादा पानी भरता है, इतना ज़्यादा पानी भरता है, क्योंकि मैं पिछले साल राखी वाले दिन वहां से गुजरा था और मुझे ही पता है कि मैंने अपनी गाड़ी कैसे निकाली थी उस जगह से। और इसी के साथ साथ बता दो आपको वहां पर भी काम चल रहा है, और बोला गया है कि इस बार जैसे ही मॉनसून आएगा तो उसके आने से पहले, यानी कि कल है 30 तारीख और एक्सपेक्टेड है 1 जुलाई को मॉनसून आ रहा है, तो कह रहे हैं कि कल तक काम खत्म हो जाएगा। ऑल्दो मैं उधर अभी गया नहीं हूं और मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि वहां की क्या स्थिति है। नंबर है जी मेरा 9654896896, बताइएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने फरीदाबाद में बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता था और कोशिश की जा रही है कि इस साल मॉनसून में ऐसा ना हो। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना, ये गाना थोड़ा सा अच्छा सा है ना, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6।

0: उपवास हैं।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सत्य से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: हाँ तो अर्ज किया है।
5: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
4: कर रहे हैं आप, सुनो तो
5: इरशाद।
4: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
5: तुम्हारे नंबर पे?
4: हाँ जी।
5: अच्छा,
4: और उन्होंने पूछा क्या?
5: क्या पूछा?
4: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
5: क्या बात कर रहे हो?
4: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
5: अच्छा,
4: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
5: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
4: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
5: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
4: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
5: बाय।
4: सुनो तो, कहाँ चली?
5: बाय।
6: जिन मनुष्यों को दानों से बचा रहा है, कलयुग में दानों से कहीं अधिक पापी हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पाप धरती के सबसे बड़े तालाब को जन्म देगी, जिसके जागते ही संपूर्ण मानव जाति हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी।
7: मैं धूम्रपान का आदि हूँ, भोले को भांग चढ़ाता हूँ।

0: मुझ जो चाहे वो कर सकता हूँ, सब छोड़ के सारे बुरे कर्म लो मानवता पर चलता हूँ। क्यों इंतजार करे हम सब श्री कृष्ण के अवतार का, सब मिलकर हम निर्माण करें नव सतयुग से समाज का, जहाँ पशु को पूजा जाता हो और मांस कोई ना खाता हो, हर मानव में मानवता हो ना मानवता दिखावा हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

सब लोग, इनफैक्ट फरीदाबाद के ऑलमोस्ट 90% लोग इस टाइम परेशान पड़े हैं। वो एक चीज को लेकर परेशान है कि इस बार SIR जो हो रहा है तो हमारा जो ये फॉर्म है इसे कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है। डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो, सबसे पहली चीज, अभी मेरे पास फॉर्म है बट मुझे पता है कि आपके पास इस टाइम अभी फॉर्म होगा नहीं, तो मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, बट आपको एक ट्रिक बता सकता हूं। आपको क्या करना है, फॉर्म की फोटो खींचनी है और आपको ChatGPT पे या फिर गूगल पे डालना है, जेमिनी पे, और उससे पूछना है कि इसमें क्या क्या फिल करना है आपको, तो वो आपको एक तरह से हिंट दे देगा। नहीं तो ऊपर आपके BLO का नंबर लिखा होगा, BLO इज बूथ लेवल ऑफिसर, उनका नंबर लिखा होगा, उनसे आप फोन करके पूछेंगे तो आपके पास पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। अगर तब भी समझ ना आए तो फिर आस पड़ोस में किसी से पूछ लीजिएगा, RW से पूछ लीजिएगा। और इसके साथ साथ SIR क्यों हो रहा है, देखो ये एक खास स्पेशल अभियान है जिसमें वोटर लिस्ट को ज़्यादा डिटेल से अपडेट या और वेरीफाई किया जाता है। अब इसमें होगा क्या, जितने भी नए एलिजिबल वोटर्स हैं ना उनका नाम जुड़ जाएगा, गलत या फिर डुप्लीकेट एंट्रीज अगर होगी गलती से भी तो उनको हटा दिया जाएगा, और जिन लोगों का देहांत हो चुका है या फिर जो लोग शिफ्ट हो गए हैं तो उनकी एंट्रीज अपडेट हो जाएगी या फिर रिमूव हो जाएगी। तो वोटर लिस्ट को सबसे ज़्यादा सही और अपडेटेड बनाने का मकसद है, इसीलिए ये SIR किया जा रहा है। और इस प्रोसेस में BLO घर घर जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके जानकारी इकट्ठे कर सकते हैं। और देखो, फरीदाबाद अभी बहुत पीछे है इस चीज़ में, मुझे लगता है कि हमें आगे आना पड़ेगा। तो हम लोग सब लोग जल्दी से जल्दी ये SIR वाला फॉर्म फिल करें और इसी के साथ साथ इसको अपडेट करके सब लोगों तक पहुंचा, मतलब BLO तक वापस पहुंचाए। तो चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के मन में ख्याल आए ना आए मगर गाना जरूर चलेगा ख्याल, तलविंदर की आवाज में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इशान,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुन।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: Yo, boys, I am singing sound.

डू यू नो ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ठग्स भी बढ़ रहे हैं। ये वही ठग हैं जो पहले के टाइम पे मुखौटा बंद कराते थे घोड़े पे सवार होकर और फिर लुटेरे होते थे, लुटेरे कह सकते हैं, मगर आज ये कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठ के लूट रहे हैं लोगों को, और वो भी भोले भाले लोगों को। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास भी कॉल आ जाती है मगर फिर उनको पता चल जाता है कि गलत इंसान के पास कॉल कर दिया है, ऑल्दो उनको कुछ मिलना नहीं है मुझसे बट स्टिल मैं आप सभी को बता दूं, देखो नए नए टाइप के फ्रॉड्स आ रहे हैं और ऑनलाइन ठगी बढ़ रही है दिल्ली NCR में, खासकर फरीदाबाद में। हम लोग ऑलमोस्ट डेली सुनते हैं ये सब चीज़ें कि इसके साथ ठगी होगी, उसके साथ ठगी होगी, और अब शिकार बनाया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को, यानी कि 15 से 18 साल के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, 11, 12 में पढ़ते हैं, उन लोगों को बोला जाता है देखो आप लोग ना एक काम करो, अपना बैंक अकाउंट दे दो, हम आपको 5,000 rupees पर मंथ दिया करेंगे आउट ऑफ नोवेयर, मतलब फ्री में 5,000 रुपये मिल रहे, कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा, सब करेंगे, और फिर उसके बाद उनसे उनका अकाउंट ले लिया जाएगा। और ऐसा ही सेम टू सेम होता है फिर उसके बाद कि आपके अकाउंट में सारे ठगी के पैसे आते हैं और फिर उधर से डिसबर्स कर दिए जाते हैं, मतलब निकाल दिए जाते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जो भी बच्चा मुझे सुन रहा है, फिर जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, अपने बच्चों के अकाउंट पर खास ध्यान रखें कि उनका अकाउंट कहाँ कहाँ खुला हुआ है, उनका मोबाइल नंबर कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है। अगर आपको नहीं पता तो पता लगवाइए। और इसी के साथ साथ बता दूँ, रिसेंटली ऐसा हुआ है कि दिल्ली में 10 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का खुलासा हुआ है। हुआ ऐसा कि एक बच्चे का अकाउंट खुलाया गया और फिर उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करे गए, और वो जो पैसे आए तो बच्चे के पेरेंट्स ने खुद ही जाके पुलिस को बता दिया कि देखो मेरे बच्चे के अकाउंट में पैसे आए हैं। फिर जब पूछताछ हुई तो बच्चे ने बताया कि हाँ मेरे पास कुछ लोग आए थे, वो बोल रहे थे कि आपको हर महीने 10,000 रुपये दिया करेंगे, तो ऐसे जाके वो पकड़े गए। बट हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता है। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि जो भी इंसान मुझे सुन रहा है प्लीज़ सतर्क रहिए और रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी को ऐसे फ्रॉड से बचाने के लिए मैं कोई ना कोई एग्जांपल ज़रूर लेकर आता हूँ। और हाँ, इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूँ कि 5 टाइप के नए फ्रॉड्स आए हैं, कौन से हैं वो फ्रॉड, करेंगे उसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, मैं हूँ द मोस्ट वॉन्टेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

सरकार ने सोचा कि हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग बढ़ा देंगे, हम लोग डिजिटल पेमेंट वाला सिस्टम बढ़ा देंगे, मगर उसके बढ़ते ही साइबर ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। नो डाउट, देखो जो फैसिलिटीज मिलती है ना, तो उसका दुरुपयोग करने वाले लोग भी बैठे हैं मार्केट में। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। ये गाना था पल पल दलविंदर की आवाज में, पल पल जीना बेहाल, ऐसा इन्होंने कर रखा है, मतलब साइबर ठगों ने कर रखा है। नए नए टाइप की फ्रॉड्स लेकर आ रहे हैं यार ये लोग, मतलब अब मैं टॉप 5 आपको टाइप के फ्रॉड बताता हूँ ताकि आप लोग ना सतर्क रहो। तो देखो सबसे पहला फ्रॉड क्या होता है, फर्जी UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट। आपके पास कॉल आएगा, बोलेगा बेटा मेरे को आपके पापा को पैसे भेजने थे और मैं एक काम करता हूँ आपको पैसे भेज देता हूँ। वो पैसे नहीं भेजेगा, वो आपको पेमेंट रिक्वेस्ट करेगा, पेमेंट कलेक्ट करने की रिक्वेस्ट करेगा और फिर उसके बाद आपसे बोलेगा अपना UPI पिन डाल दो, आपके पास पैसे आ जाएंगे। गलती मत करना, क्योंकि पैसे भेजने के लिए UPI पिन डालता है, पैसे लेने के लिए कभी भी UPI पिन नहीं डालता है। और इसके अलावा फिशिंग लिंक तो सबसे इजी तरीका है, मतलब एक फेक पेज बना दिया जाएगा आपकी ट्रस्टेड बैंक, जिस बैंक को आप लोग यूज़ करते हो उसके बैंक का एक फेक पेज बना दिया जाएगा और उधर से ही आपसे ट्रांजेक्शन करवा दी जाएगी। इसके अलावा रिमोट एक्सेस ले लेते हैं, मतलब आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस उनके पास आ जाएगा। आपको फ़ोन करके बोला जाएगा कि आपका बिजली का बिल बकाया है, आपका गैस कनेक्शन कट जाएगा, तो आप लोग फटाफट ये ऐप डाउनलोड करिए और बस उसके बाद आपका फ़ोन खाली कर देंगे वो। और नकली कस्टमर केयर का भी फ़ोन आता है और साथ में सिम स्वैप जैसे फ्रॉड भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं सिंपल सी बात एक बोलना चाहूंगा, देखो कभी भी अपना OTP किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपना UPI पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना और बैंकिंग पासवर्ड तो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, भगवान ना करे कभी हो, अगर बाय चांस कभी हो जाए, तो सबसे पहले आपको एक नंबर मिलाना है 1930। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे, उन्हीं में से ये गाना 89.6 रेडियो महारानी पर।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: बच्चे बिठा लेते हैं।
1: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
0: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ
0: आगे सुनो।
1: सुनाओ।
0: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
1: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
0: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं, एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है, मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन

संसार गना पर बुद्धि को एकांत करा, मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा, मैं शून्य बना, मैं शांत बना, डिवोइस मैं देवांश बना, मैं लिखता गया अब कोई लगाम विचार पे ना।

लोग ना नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं पैसे कमाने के लिए। कुछ लोग क्रिएटर बन रहे हैं, तो कुछ लोग क्रिएटर बनकर पैसे कमा कर दिखा रहे हैं कि देखो अगर मैं ये काम करता तो मैं इतने पैसे कमा लेता। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड जो मैं अभी बात बोल रहा हूं वो ये है कि एक लड़के ने पूरी वीडियो बनाई, इन्फ्लुएंसर है ये लड़का, और इसने पूरी वीडियो बनाई ऋषिकेश की गंगा घाट की, और वहां पर लोगों के तिलक लगाया, बस तिलक लगाने का काम किया। और सिर्फ 3 घंटे इसने ये काम किया, और 3 घंटे के अंदर इसने 400 से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया, और सोचो कितने कमा लिए होंगे। मैं एक सपोज करता हूँ कि एक इंसान ने 10 रुपये दिए होंगे, तो 400 लोगों ने 4000 रुपये, नहीं ऐसा नहीं है, 4000 रुपये इसने नहीं कमाए, ना ही इसने 3000 रुपये कमाए, पर इसने जो कमाया दैट्स अ डिसेंट अमाउंट। 3 घंटे का काम करके इतना कमा लिया तो बहुत बड़ा अमाउंट है। इसने एक टोटल कमाए हैं 2350 रुपये, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पूरी की पूरी वीडियो डाली है, सोशल एक्सपेरिमेंट था, लोगों को टीका लगाना शुरू किया, और फिर उसके बाद बोला कि देखो अगर आप भी ऐसे गंगा घाट पर 3 घंटे के लिए टीका लगाने का काम कर दोगे तो आप लोग भी इतने रुपए कमा सकते हो। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग ऐसा ही काम शुरू कर दो, क्योंकि देखो काफ़ी बार ऐसा होता है कि नहीं ये सब काम सूट नहीं करता, कितने दिन कर लोगे, नहीं करना ये सब काम। तो चलिए अभी फ़िलहाल बस मैं आप सभी को ये चीज़ शेयर कर रहा था, और इसलिए शेयर कर रहा था ताकि आप लोगों को भी पता चले कि लोग कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं। तो आप लोग अगर इन्फ्लुएंस हो गए ना तो फिर वापस डी इन्फ्लुएंस हो जाओ। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए ये गाना हर्ष लिखर की आवाज़ में, बेबे बापू।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

अभी थोड़ी देर पहले मैं ऋषिकेश की बात कर रहा था और उसी बीच मेरे सामने एक पोस्ट आ जाता है। आई डोंट नो ये AI क्या करके मानेगा, क्योंकि फोन सब कुछ सुन रहा है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैं मैं ऋषिकेश की बात कर रहा था और इतने में मेरे पास एक पोस्ट आता है और उसमें लिखा हुआ है कि ऋषिकेश से भी ज़्यादा सस्ता है अगर आप श्रीलंका घूमने चले जाओ। मैं नहीं मानता, बट इस पोस्ट में इस बंदे ने बताया कि ऋषिकेश घूमने गया था, वहाँ पर होटल ढूंढा, अच्छा होटल का रेट था 9,000 से 15,000 रुपये। सीरियसली इतना महंगा तो नहीं होता? मतलब लाइक अगर लड़के लड़के घूमने गए उनके लिए तो यार 1,000-1,500 रुपये वाला रूम भी इनफ होता है। खैर वापस आते हैं मुद्दे पे। मुंबई या दिल्ली से फ्लाइट का किराया 7,000 से 8,000 रुपये आता है, तो श्रीलंका जाने का बोल रहा हूँ मैं, तो श्रीलंका 7,000 से 8,000 रुपये में पहुँच जाओगे और वहाँ पर 5-स्टार होटल 3,000 से 5,000 रुपये में मिल जाता है, क्योंकि हाँ करेंसी चेंज होती है ना, तो इस वजह से इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आपको 3,000 से 5,000 रुपये में 5-स्टार होटल मिल जाएगा श्रीलंका में। और इंडिया में पर्यटन सच में महंगा होता जा रहा है, तो ये तो रियलिटी है। अगर आप गोवा जाना चाहते हो, इससे बढ़िया आप जा सकते हो वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि इंडिया के अंदर घूमना फिरना बहुत सच में महंगा हो रहा है। और इसको लेकर ऑनलाइन भी लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, बोल रहे हैं इंडिया जैसा कुछ नहीं है। नो डाउट इंडिया इज़ द वेरी लाइक मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही अच्छी। हाँ इंग्लिश का वर्ड नहीं आया मेरे मन में इसलिए मैं नहीं बोल पाया, बट हाँ इंडिया से अच्छा कुछ नहीं है। उसके अलावा ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप थोड़े पैसों में ज़्यादा घूमना चाहते हो तो आप ऐसी कंट्री जा सकते हो जहाँ पर इंडिया की करेंसी की वैल्यू थोड़ी सी ऊपर हो। श्रीलंका जा सकते हो, लाओस जा सकते हो, थाईलैंड जा सकते हो, वियतनाम जा सकते हो, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी भी सुन सकते हो। मतलब सुनते जाइए रेडियो महारानी। अभी आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, वापस आकर बात करते हैं क्रिकेट की। हाँ बोला।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: Thank you.

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: में
1: कल का मैच
0: बकवास है
1: बिल्कुल, और क्या बोलूं मैं इसके अलावा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। T20 मैचेस चल रहे हैं, किसके? इंडिया वर्सेस आयरलैंड। और इंडिया वर्सेस आयरलैंड ये जो मैच था ना, इसको देखने के बाद मेरा तो मन ही उठ गया, क्योंकि दो मैचों की ये सीरीज थी और दोनों के दोनों जीत लिए हैं आयरलैंड ने, और एक मैच एक रन से जीते हैं वैसे कल वाला मैच। बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि हार तो हार है, चाहे एक रन से हारो या फिर 10 रन से हारो। स्कोर कार्ड की अगर मैं बात करूं तो इंडियन बैटर्स कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। जो दोनों ओपनिंग करने गए थे, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, दोनों के दोनों जीरो पर आउट हुए पहली बॉल पर ही। और उसके अलावा फिर बैटिंग की अगर मैं तारीफ करूं किसी की, तो दो खिलाड़ी जिनकी बैटिंग की तारीफ करनी बनती है। पहले है तिलक वर्मा, जिसने भाई लड़के ने 46 बॉलों में 55 रन मारे, और दूसरा लड़का है हर्षित राणा, 10 बॉलों में 21 रन मारे इस लड़के ने। इस लड़के ने एंड तक हिम्मत नहीं हारी। और यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूँगा हमारे नए खिलाड़ी प्रिंस यादव की, जिसने बॉलिंग में कमाल करके दिखाया। प्रिंस यादव ने 3 विकेट ली, 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 22 रन दिए थे। मैच बहुत अच्छा था एट द एंड, ऐसा लग रहा था एक बार को कि इंडिया जीत जाएगी अगर हर्षित राणा आउट नहीं हुए होते तो। अब इन सब की विकेट्स ली किसने है? विकेट्स ली है एक ऐसे इंसान ने जो कि इंडिया का ही रहने वाला है, और इस लड़के ने टोटल 5 विकेट ली है मतलब दोनों मैचों में। तो कौन है ये लड़का, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। ला रहे हैं ये गाना मनिंदर भट्टर की आवाज में, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।
2: मैं

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: ध्वनि भानुशाली की आवाज में था ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत है इसी गाने के साथ। मैच की बात कर रहा था, मतलब इंडिया वर्सेस आयरलैंड जो ये मैच हुए थे इनके बारे में मैं बात कर रहा था। और जैसे ही मैंने इनके बारे में बात करी मेरा दिल टूट सा गया, क्योंकि देखो 2-0 से हारी टीम इंडिया, और वो भी उस टीम से हारी जिससे कभी हारी ही नहीं थी। मतलब T20 चैंपियंस हैं हम लोग यार, और फिर उसके बाद T20 में ही हार गए। खैर, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है एक ऐसे तेज गेंदबाज को जो कि आयरलैंड की तरफ से खेल रहा था, मगर अभी भी उनके पास भारतीय पासपोर्ट है, और इस लड़के का नाम है जय मुंद्रा। भाई ये लड़के ने क्या विकेट लिए हैं 2 मैचों में, इस बंदे ने 5 विकेट लिए टोटल, और सीरीज में 5 विकेट लेना कोई आम बात नहीं है, और वो भी इंडिया के अगेंस्ट 5 विकेट लेना इज नॉट एंड एवरीवन्स कप ऑफ टी, ये बोलना चाहूँगा। और पहली बार आयरलैंड सीरीज से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या निकल रहा है, ऐसा इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं गम है मुझे, इंडिया हारा है आयरलैंड से, और पहली बार ऐसा हुआ है कि आयरलैंड से सीरीज हारा है इंडिया। बता दूं आपको 2021 में ये लड़का जय मुंद्रा राजस्थान के टोंक से गया था मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए आयरलैंड, और वहां पर क्रिकेट खेलना शुरू किया, और वहां पर उनकी टीम में सेलेक्ट भी हो गया ये लड़का, और अब इंडिया के अगेंस्ट 5 विकेट भी ले लिए। नो डाउट कल को इस लड़के को पक्की बात है IPL में जगह जरूर मिल सकती है, क्योंकि अभी भी इंडियन पासपोर्ट है इस लड़के के पास, इंडियन सिटीजनशिप है इस लड़के के पास, तो ये तो देखना बनता है कि इंडिया में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, ऐसी ही खूब सारी बातें और भी करते रहेंगे, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।
1: थोड़ी विस्की, थोड़ी आइस, थोड़ी मुझ में बैड वाइब्स, थोड़ी बातें तेरी टॉक्सिक सी, थोड़ी थोड़ी सैड लाइफ, ये थोड़ी

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: मैं लाइकी की
4: आशा।

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

ये गाना तो मैं नहीं गाना चाहूंगा, दिलबरा और रनिटा मतलब मिक्स मैशअप था, बट मैं एक गाना गाना चाहूंगा, जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का उधर भी हो रहा होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो क्योंकि शाम होते ही ना अब भूख लगने लग जाती है बहुत तेज, मतलब वो दिन का खाना खत्म हो जाता है, रात के खाने में भी बहुत टाइम है, तो फिर मन करता है बीच में कुछ खा लूँ। तो आप लोगों को भी मन कर रहा होगा, आप लोग भी गाड़ी चला रहे होंगे इस टाइम अगर, तो आप लोगों की भी कोई फेवरेट स्पॉट होगी फरीदाबाद में। देखो मैं अगर मीठा प्रेफर करता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ रबड़ी फलूदा खाने के लिए। गर्मियों में रबड़ी फलूदा, सर्दियों में तो फिर मैं किसी भी मिठाई की दुकान पर रुक जाऊँगा, कुछ भी खा लूँगा। नहीं तो आजकल मुझे एक चस्का चढ़ा है कोल्ड कॉफ़ी पीने का, पता नहीं क्यों ये मेरे को चस्का चढ़ गया है, और उसमें विदाउट शुगर मैं पीता हूँ कोल्ड कॉफ़ी, और मतलब वो फ्लेवर में शुगर ऑलरेडी होता है। तो आप लोगों भी के भी कोई ना कोई फूड जॉइंट्स होंगे फेवरेट, जहाँ पर आप ऑलमोस्ट हफ्ते में एक बार या फिर 10 दिन में एक बार ज़रूर जाते होंगे। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोग डेली डेली एक ही सिंगल फूड जॉइंट पर खाना खाते हो, तो प्लीज़ उसको बंद कर दो, क्योंकि देखो क्या होता है, अपनी हेल्थ भी ज़रूरी है। आप लोग घर में जो खाना बनाते हो वो अच्छा होता है, बाहर का खाना ठीक है, मतलब कभी कभार वंस इन अ वाइल चलता है, तो इस चीज का भी ध्यान दीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी से मुझे दीजिए इजाजत, मैं निकलता हूं यहां से, मिलूंगा आप सभी से कल शाम फिर से शाम को 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। वापस आएगी गीत विद इश्कबाजियां, खूब सारे प्यार भरे गाने लेकर आती है, इतने अच्छे अच्छे ट्रैक्स आपके लिए निकाल के लाती है, और इसके अलावा उसकी प्यारी बातें, तो सुनना ना भूलिए रेडियो महारानी पर इश्कबाजियां विद इश्क वाली गीत। और इसी के साथ साथ बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं कल मंगलवार को शाम 5 से 8। तब तक के लिए सुनिए इस गाने को, मेरा वाला फेवरेट, हाँ ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन चलाई देता हूँ, तो सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

गाने के साथ स्वागत है। शो लेकर आ गई हूँ इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। आप जल्दी से आ जाइए मेरे साथ ताकि बहुत सारी बातें आप तक पहुंचा पाऊँ। और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है फराज। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना? फराज के नगमे यहाँ पर मैं कुछ छेड़ने वाली हूँ, कुछ उनकी बातें जो वो कह गए, उनकी बातें दिल से निकली और लोगों के दिल तक सीधा पहुंच गई। ऐसी ही बातें मैं आपके दिल तक पहुंचाऊंगी। और फराज की बात हो रही है और उनकी वो बहुत ही खूबसूरत सी शायरी मैं आप तक ना पहुंचा पाऊं कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। और बहुत ही गहरी बात कह दी है फराज ने इस शायरी के थ्रू। वो

ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। हो सकता है कि जो खजाने आप ढूंढना चाहते हैं, जो किसी इंसान की इंसानियत आप ढूंढना चाहते हैं, वो आपको खराबों में मिल जाए। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप ढूंढ किसे रहे हैं। फराज की बातें चल रही हैं और फिलहाल वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली की।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसके गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। फराज के बारे में बातें चल रही हैं, उनकी खूबसूरत शायरी जो मुझे लगता है हम लोग आए दिन सुन ही लेते हैं, और आजकल तो इंस्टाग्राम पर शायरी का जो एल्गोरिथम आया है ना वो बहुत खास है। चलिए कम से कम हम वो पुरानी शायरियों से तो रूबरू हो रहे हैं। तो इसी बात पर ना मुझे फराज की एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी याद आई है कि जहाँ के शोर से घबरा गई क्या, तुम अपने घर को वापस आ गई क्या। यहाँ कुछ आशना सी बस्तियां थी, जंजीरों को समंदर खा गए क्या। ना थी इतनी कजा ताजा मुसाफत, पुराने हम सफर याद आ गए क्या। मेरी गर्दन में बाहें डाल दी हैं, तुम अपने आप से उकता गए क्या। यानी कि फराज इस शायरी में कहना चाहते हैं जो इंसानियत, शायद ये हमारे जितने भी शायर थे और जितने भी कवि थे ना, इनको पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है, और ये शायरी में यही कहना चाहते हैं कि इंसानियत कैसे गायब हो जाएगी इंसानों से, कि यहाँ कुछ आशना सी बस्तियां थी, जंजीरों को समंदर खा गए क्या। और ऐसी ही बातें जारी रहेंगी। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। अगला गाना

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत, और फराज की बातें चल रही हैं, फराज की बातें चल रही हैं, और फराज की वो शायरी मुझे याद आ रही है यहाँ पर, स्पेशली इस फिल्म के टाइटल को टच करती हुई वो शायरी है। जब कोई इंसान आपको बहुत टाइम बाद मिलता है ना, और वो ऐसी सिचुएशन होती है जब आप उस इंसान को अपना नहीं पाते हैं, और अक्सर आपके दिल में ये बात रह रह कर आती है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, क्योंकि तू बहुत देर से मिला है मुझे। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का भी हौसला है मुझे। दिल धड़कता नहीं टपकता है, कल जो ख्वाहिश थी आबला है मुझे। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। और फराज ने इस बात के थ्रू ना उन हजारों लोगों को एक कड़ा तंज कसा है, जो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी ना मेला है, बस उन्हें लोग ही लोग चाहिए। और यहाँ वो कहना चाहते हैं कि हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, उन्हें सिर्फ एक हम सफर चाहिए, पूरा एक मेला नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। एक मुसाफिर जो है, एक जो इंसान है, वही मेरे लिए जिंदगी भर के लिए काफी है। तो फराज की खूबसूरत बातें चल रही है। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: क्या आपको पता है कि फेसबुक पे आपके रिलेटिव से ज्यादा खतरनाक सिर्फ एक ही चीज है और वो है हैकर्स। तो उनसे प्रोटेक्शन चाहिए तो कुछ मेजर्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड की। लेट मी गेस, आपका पासवर्ड क्या ही होगा? पासवर्ड 123 या फिर 12345? अरे भाई, तुम्हारा पासवर्ड इतना वीक है कि मेरी नानी भी गेस कर ले। तो सबसे पहले अपना पासवर्ड ऐसा बनाओ जैसे अपने क्रश को प्रपोजल लेटर लिख रहे हो, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल। याद रखो दोस्तों, रहो स्मार्ट बनो और फेसबुक पे बॉस रहो।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत और बातें चल रही हैं फराज की। और फराज की एक शायरी अभी मैं पढ़ रही थी और मुझे ना इस शायरी से वो बात याद आई कि जब दो लोग साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं, होता है ना अक्सर हमारी जिंदगी में, ये बात मुझे लगता है हर किसी के साथ हो ही जाती है, जब वो जमाने के लिए नहीं बदलते एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं और एक दूसरे से नजरें मिलाते नहीं हैं, नजरें बचाते हैं। इसी बात पर लिखा है फराज ने कि दुख छुपाए हुए हैं हम दोनों, जख्म खाए हुए हैं हम दोनों, तो कभी चांदनी थी और धूप था मैं, अब तो साए हुए हैं हम दोनों, जैसे एक दूसरे से शर्मिंदा सर झुकाए हुए हैं हम दोनों, जैसे एक दूसरे की चाहत को अब भुलाए हुए हैं हम दोनों। इश्क कैसा कहां का अहद फराज, घर बसाए हुए हैं हम दोनों। जब दो लोग एक दूसरे से ही अजनबी हो जाते हैं, इस पर फराज ने बहुत ही खूबसूरत सी शायरी लिखी है। ऐसी ही कुछ बातें और मैं आपको बताने वाली हूं, लेकिन अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

विशाल मिश्रा की खूबसूरत आवाज में गाना है और देखिए गाने का टाइटल भी खूबसूरत है और फराज की जो ये अगली शायरी है ये भी खूबसूरत है क्योंकि इन्होंने खूबसूरत किसी शख्सियत के लिए लिखा है जिनसे शायद या तो ये प्यार करते थे या किसी के लिए भी इन्होंने लिखी है कि सुना है लोग उसे आंखें भर के देखते हैं सो कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है सितारे उसे फलक से उतर के देखते हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को उसे जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कुतर के देखते हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। सोचे जब फराज ने इतना खूबसूरत लिख दिया है तो वो शख्स कितना खूबसूरत होगा। और फिलहाल वक्त है यहाँ पर ऐसे ही खूबसूरत से गाने का, गाना है अगला शोर इन द सिटी से साइबो गाना है और इसके बाद मैं रेट्रो इश्क लेकर आ रही हूँ, कहीं जाइएगा मत, इंतजार कीजिए और फिलहाल गाना सुनिए।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके लेकिन

गाना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजिया में हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहाँ मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता। अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहां किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहां किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली।

अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं, कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: आप तो बोलते रहे भाई।

कुछ वादे सच्चे होते हैं, लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं, और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं, और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां, और मैं हूं इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है। इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
1: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपर हिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत, जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा, आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी ये। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह।

0: लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
1: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में, जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठती हैं राज कपूर से और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल। शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजू की दिल दिया गल।

बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ए दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दिया गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसके बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाओ, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का, और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आपको उसकी चिंता तो नहीं रहती। जैसे आप जब भी उसके बारे में सोचते हैं किसी बात को लेकर, तो आप परेशान हो जाते हैं, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम से आप परेशान होते हैं, और आप हर बार कोशिश करते हैं कि वो इंसान अच्छा फील करे, आप उसे सही रास्ते पर ले जा पाएं, या आपको किसी की याद आती रहती है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स है। तो मेघा मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

तू तेरे गाना है फिल्म जन्नत टू से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दिया गल्ला, और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना, कई बार बहुत अजीबो गरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए, किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहाँ एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया, और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखाई गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है। और इसमें होता यह है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है, और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है, या क्या फीलिंग है। तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्क बाजिया। मैं हूँ इश्क वाली गीत, और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: सड़क के किनारे अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
1: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
4: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाली एटीएम का उपयोग करने से बचें।
3: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
6: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है रमेश बाबू। अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहे, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दिया गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहां ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: डॉलर्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात।

पर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ही खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM
4: कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
6: झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ वो पेड़ पर दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महाराष्ट्र 0.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कदी
1: कुड़ी मैनू कहती
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला।

0: गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
1: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: तीर हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
4: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
4: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
5: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: ध्वजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
3: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता
2: है। अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: है अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल को
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

शख्सियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हक

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: हाल कैसा है जनाब का,
5: क्या ख्याल है आपका,
4: तुम तो मचल गए।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की ना कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा।

0: मीठा सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है। शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: मोना।
0: सुनो तो सुनो तो
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप

0: आप यहाँ आए किस लिए?
1: आपने बुलाया इसलिए।
0: अच्छा, आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: ऊंची देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।
1: भूल

हरे

0: आप मुस्कुराई
1: कभी। ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

सजदा है मेरे लिए मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: का पथ ही है बस ऐसा पथ, जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव बांट रहा हूँ। श्री रामसुख दास जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था किसी दिन में, और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन का एक अनुभव उसमें कहा था कि हमारे जीवन में, हमारे साधन काल में एक क्षण ऐसा आया जब हमने अपने मन में ये संकल्प किया कि अब हम कोई संकल्प नहीं करेंगे। मन करेगा तो करेगा, पर हम उसके संग नहीं चल देंगे, हम उसके साथ नहीं चलेंगे, चाहे वो संकल्प पारमार्थिक संकल्प ही क्यों ना हो। यहाँ के रसिकों ने कहा है, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सन। स्वामी जी ने कहा चाहे वो पारमार्थिक संकल्प भी क्यों ना हो, हम कोई संकल्प नहीं करेंगे, बस अपने अपने श्री हरि की इच्छा में हमने अपनी सब इच्छा मिला दी, अब राजी हैं हम उसी में और जिसमें तेरी रजा है। और मैं कहता हूँ भक्ति की सबसे सरलतम व्याख्या यही है कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी जाए। हमारे महाप्रभु जी तो रसगान का आरंभ यहीं से करते हैं, जोई जोई प्यारो करे।

प्यारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। और स्वामी जी ने आगे लिखा कि भाई अब हमें तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। और जाने उस एक पंक्ति में कैसी शक्ति थी, कैसी ऊर्जा थी कि वो शब्द मेरे भीतर गए, उन शब्दों ने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाया। तो भक्ति मुझे लगता है यही है भाई, इसी को समर्पण कहते हैं। भक्ति का प्राण समर्पण है। और यही समर्पण, जब अपने मन की कोई इच्छा ना रहे, और मन इच्छा करे तो करने दीजिए, आप मन के पीछे मत चलिए।

मत मोह सिंधु की दारा, कार दया कर कर मुहि पारा। रोगी वैद्य से कह रहा है कि मुझ पर कृपा करो और मैं डूबता जा रहा हूँ इस मोह सिंधु की धारा में, किसी प्रकार मुझे पार करो। हो अति दीन महा दुख पावत, लोग कुटुंब को मुंह ना लावत। क्या आवश्यक है जीवन में अपनी ये झांकी देखना, क्या आवश्यक है कि हम अपनी ऐसी दुर्दशा जीवन में देखें। ये जो समय है ना आपके पास, ये जो जीवन है आपके पास, यही आपकी निधि है, यही आपकी संपत्ति है। कबीर जी ने तो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग कहा है, मैं प्रयास करूंगा कल लेकर आऊं कबीर जी की वाणी का वो प्रसंग। वो कहते हैं कि भाई कर सको तो नित्य करो, नित्य नहीं करो तो सप्ताह में करो, नहीं तो एक मास में, नहीं तो एक वर्ष में। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक दिया है जीव को प्रबोध देने के लिए। जो समय है ना, यही आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन जाकर समझिए धाम में रहना है। लेकिन धाम में कैसे रहना है, साधक की भांति रहना है।